0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: Hello and welcome to the latest edition of It's Gone Viral. In the next half an hour, we will be showing some of the images and videos that have gone viral last week and created some buzz.
2: It's that time of the day, early in the morning, जहाँ पे आपको 10 चीजें करने के लिए ब्लैंकेट से चीजें मंगा रहे हो, दीदी काम कर रही हैं, खाने में क्या बनना है, ऑफिस के निकलना है, what's the time? It's that rush, right? उतनी देर में आपका ब्लैंकेट का ऑर्डर आता है एंड एक सील पैकेट के अंदर किसी का रिज्यूमे निकलता है.
3: A Delhi man got more than groceries with his Blinkit order after discovering a resume tucked inside the package. The unexpected job hunting attempt shared by creative director Ankit Bawa quickly went viral as social media users praised the candidate's unconventional and creative approach to reaching potential employers.
2: And then, once you open it, it is an ad for Insta help. It's just all the good things about their services. I'll put a screenshot. Insta help, you've got me. Urban clap, perfect way to get someone's attention early in the morning, jahan pe unko 10 cheezein karne ke liye. Good job.
4: It's been 2 to 3 weeks since we moved back to India after living in Germany for over a decade. And every single day feels like relearning how life works.
3: After spending over 15 years in Germany, a woman who moved back to Pune shared her experience of dealing with reverse cultural shock. Her candid reflection about readjusting to life in India resonated with many returning NRIs who related to the challenge of adapting back home.
4: To now switching to English, Marathi and Hindi, from quiet streets to vibrant, bright and streets full of activities and honking, from disciplined and structured traffic to kind of free-flowing traffic, from highly structured systems to flexible jugaad solutions, from people starting their morning at 6 a.m. to hearing kya baje dukaan khulegi madam, from hyper-punctual schedules to delays of 30 to 60 minutes being considered completely normal, from a DIY culture to a convenience and service-driven society. Some things feel familiar, some things feel completely new again. And honestly, moving back to your own country after so many years feels like a reverse cultural shock too. Follow along as we navigate this transition, make new lifestyle choices and rebuild our life in Pune, India.
5: Guys, मैं अपने सपने पूरा करने मुंबई आया हूँ. ये देखो, बिना बालकनी वाला फ्लैट. तो जो लोग भी सपना देख रहे हैं उन लोगों को मैं बस एक एडवाइस देना चाहूंगा कि सपना ऐसा देखो जिसमें मुंबई नहीं आना पड़े.
3: A content creator has gone viral for hilariously capturing the financial shock of renting a home in Mumbai. Through sarcasm and relatable observation, the video highlighted the city's notoriously expensive housing market, striking a chord with students, professionals and dreamers trying to build a life there.
5: क्योंकि भाई साहब, जब आप अपना सपना लेके मुंबई आओगे और आपको यहाँ के घर का रेंट पता चलेगा, तो भाई साहब आपका ये सपना हो जाएगा कि ये बस रेंट अफोर्ड कर लूं. या फिर आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि सपने पूरे करने इतने इंपॉर्टेंट हैवी नहीं, रहने देता हूँ. तो है सुखचिंतक, मैं बस आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि विदाउट मुंबई सपने देखोगे तो सुखी रहोगे. जय हिंद, जय सपने.
6: गाइस, मेरा एक फॉरेनर मैनेजर है जिसने आज मुझे ऑफिस में काम करने से मना कर दिया. बोला कि सौरभ प्लीज टेक अ लीव जस्ट बिकॉज आज मेरे बेबी का फर्स्ट डे है इन प्री स्कूल.
3: An Indian professional shared how his foreign manager insisted he take the day off when he learned it with his child's first day at preschool. The wholesome video sparked conversation about work-life balance and left many social media users wishing for similar understanding bosses.
6: जबरदस्ती की छुट्टी करा दी, बोला कि नहीं तुम अपने preschool के पास जाओ, वहाँ पे उसके साथ time spend करो because first day he'll be very scared and everything. Now can you imagine, कोई भी Indian manager ये चीज सोच भी सकता है? नहीं सोच सकता. वो इनफैक्ट ये बोलेगा कि हाँ ठीक है, स्कूल में भेजिए, अब तो आपका वहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ठीक है लेट्स कंटिन्यू द वर्क. ये इतना बड़ा जो डिफरेंस है इंडियन वर्सेस फॉरेनर मैनेजर्स के अंदर, ये सबको पता है, ये इंडियन मैनेजर्स को भी पता है, बट समहाउ नोबडी इज विलिंग टू चेंज. जितने भी इंडियन मैनेजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा इस चीज से सीख लेना यार, बिकॉज आई थिंक कुछ चीजें ऑफिस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ऑल्सो कॉमेंट बिलो कि आपका एक्सपीरियंस इंडियन मैनेजर्स के साथ कैसा रहा है.
3: A Delhi woman fulfilled a lifelong dream by taking her 90-year-old grandfather and 80-year-old grandmother on their first international trip. The emotional video documenting the couple's journey to London touched hearts online and proved that adventure has no age limit.

0: सी है कि
1: हाँ
0: वीडियो कॉलिंग के उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी
1: हाँ
0: राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके, पर उन्होंने बोला ठीक है बेटा उसकी इच्छा है तो चले जा। हमने जो बेटी का रिश्ता किया उससे पूछ के किया था 10 बार कि सिया तेरा हमको शादी करनी है बेटा, तो तुझे केतन जी पसंद है ना और
1: जी
0: करना है क्या आगे, तो बोले ठीक है मम्मी जी मुझे सब पसंद है और मैं करना चाहती हूँ करके,
1: जी
0: और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं है।
1: हाँ
0: आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो?
1: मैं आप माँ हो उसकी, ये
0: हाँ
1: क्या।
0: जी, अगर
1: हाँ
0: वो उसने
1: मैं तो
0: ये
1: बोलता
0: गलत
1: हूँ।
0: काम
1: हाँ
0: किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे?
1: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
2: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
1: जी मैंने उनसे विनती कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है
2: निर्णय।
1: सर ऑलरेडी SIT हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है।
2: अनाकलनीय अशा प्रकारची घटना आहे, खरं म्हणजे कुठेतरी समाज म्हणून आपल्याला विचार करण्याची आवश्यकता आहे की शिकल्या सवरलेल्या चांगल्या घरच्या मुला मुलींमध्ये अशा प्रकारची दुर्बुद्धी आणि अशा प्रकारची सूडबुद्धी ही नेमकी का तयार होते, त्याच्या पाठीमागची कारणं काय आहेत? मला असं वाटतं की याला केवळ गुन्हेगारीचा अँगल नाही तर एक सामाजिक अँगल देखील आपल्याला त्याच्यामध्ये बघावा लागेल आणि समाजाची पण एक स्ट्रॉंग व्यवस्था उभी करावी लागेल की अशा पद्धतीची सूडबुद्धी या इतक्या तरुण वयातल्या मुलींमध्ये मुलांमध्ये तयार होऊ नये, पण एकूणच ही घटना अत्यंत धक्कादायक आहे।
3: So now in this investigation after Ketan Agarwal's family met Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, the 2611 lawyer Ujjwal Nikam will be leading this case for the Agarwal family, and he will be fighting this fight for justice for Ketan Agarwal's family. Now Lohgarh murder mystery intrigues India. Ketan Agarwal's family meets Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, family seeking speedy and fair trial, and that the guilty must be punished. Chief Minister Devendra Fadnavis has assured stringent punishment to the accused in this case. Maharashtra government has also cleared fast-track trial in this case. 2611 advocate Ujjwal Nikam has been named as the special prosecutor, and police continue probe to establish the full conspiracy in this case. So the investigation is now intensifying. Now, was Chetan the mastermind of this murder? What has been revealed so far in the investigation is that Chetan Chaudhary instigated Siya Goyal to murder her fiancé, Ketan Agarwal. Chats have also been deleted before and after the murder. So the chats before and after the murder that happened on June 18, those chats have now been deleted by both Siya and Chetan Chaudhary. 238 hours of contact, 2004 calls from January this year till June before this murder. There have been 2004 calls that have been exchanged between Siya and Chetan, and which amounted to almost 238 hours of contact. Now, they both met at a cafe to finalize the murder plot, and this meeting was held just one day before the murder on June 18. So on June 17 is when Siya and Chetan had met at a coffee shop. Now, Siya signaled and Chetan then pushed Ketan. So this has now also been revealed in the investigation that they both had decided a signal, and Siya, which was that when Siya will sit down, then Chetan will push Ketan. And Siya signaled, and after which Chetan Chaudhary eventually pushed Ketan Agarwal. So this is as per the investigation. These are the findings so far in this investigation. Now, let's also take a look at the killer lovers trail. So if you talk about the digital trail, there have been 2004 calls which are now under scanner. These calls were from January to 2026 till June 2026 before the murder, which is almost till June 18. Deleted evidence, which includes chats which have been erased before and after the crime. So all the WhatsApp chats and even the Instagram activity has also been deleted by both Siya and Chetan. The confession claim, police say that both revealed the sequence of events, so they both have narrated what exactly happened on June 18 at the Lohgarh Fort. And the forensic probe, if you talk about the forensic probe, the data recovery from the phones may take some time because both of them have deleted all the data, and now the forensic teams are in action, and the data recovery may take some time. And now shifting focus to the Ram Mandir donation loot case. The probe and politics have both intensified in the donation theft controversy. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody till Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them so far. The SIT has flagged several serious irregularities, calling the donation theft willful negligence. There is now uncertainty over reported resignation of Trust General Secretary Champat Rai. While sources say that he stepped down, taking moral responsibility, his family maintains there has been no official confirmation and claims that he is the victim of a conspiracy. Even as the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has stepped up its attack on the BJP. Congress MP Priyanka Gandhi Vadra has demanded a transparent investigation instead of any cover-up, saying that those found guilty must face the strictest punishment. She also questioned whether junior employees could pull off such a heist, demanding probe into the role of influential individuals. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has mocked the ruling party in Uttar Pradesh, calling the controversy the BJP's Lanka Kand. Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal, who visited Ayodhya on Friday, has alleged that those behind the theft are conspiring against Chief Minister Yogi Adityanath.
4: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को, इनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है, वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक हैं। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं।
5: अगर 2000 करोड़ की बात सही है जी, तो ये पैसा कहां गया? ये पैसा बीजेपी ने चुनाव में इस्तेमाल किया, अपोजिशन की पार्टियां तोड़ने में इस्तेमाल किया, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के सांसद विधायक तोड़ने में उसका इस्तेमाल किया, उसकी जांच होनी चाहिए।
6: बड़े पैमाने पर लूट हुई है, ये लूट नहीं है। उपेंद्र मिश्रा जी स्वयं इसको डाका की संज्ञा देते हैं, ही हैज एडमिटेड कि ये डाका है। तो डाका कहाँ पे है? प्रभु श्री राम के मंदिर में है। मंदिर से इनकी सरकार पूरे देश में बनी है और मंदिर के द्वारा ही इनकी सरकार जाएगी पूरे देश से। पहले शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर 27 में चुनाव होने जा रहा है। वहाँ की जनता पूरी तरह से विश्वास खो चुकी है बीजेपी सरकार से।
7: नैतिकता का तकाजा क्या है? सही मानों बात यह है कि जो प्राथमिकी दर्ज हुई है, FIR लॉज हुई है, उसमें चारे छोटे लोगों को फंसाने की कोशिश की गई है और अंतिम रूप से जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। मूलतः वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं जिनका ट्रस्ट से संबंध है, चढ़ावे के बारे में भी जानते थे, वहां के आर्थिक हालात के बारे में जानते थे। तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि राज्य सरकार उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है जो सही मानों में गुनहगार थे। नैतिकता का तकाजा नहीं है, ये शहीद होना चाहते हैं लेकिन शहीद होने जैसी स्थिति नहीं है। ये तो विशुद्ध रूप से करप्शन में शामिल है और उनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो एक अपराधी के साथ होता है।
8: जो आज लोग बोल रहे हैं पक्ष में, वो केवल और केवल उनकी चपलूसी कर रहे हैं। चंपत राय ने स्वीकार कर लिया कि हम चोर हैं, हमने चोरी किया है और हम चोरी में शामिल, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिया। अगर चोर नहीं रहते तो लड़ो ना लड़ाई, लड़ाई लड़ो, लड़कर आओ भाई, मेरे नाम FIR भी होगा, मैं जेल भी जाऊंगा, पर मैं चोर नहीं हूं। चंपत राय चोर है, इस नाते उन्होंने इस्तीफा देकर आज वो मैदान से भागे हैं। लड़ने वाला मैदान से नहीं भागता, ईमानदार आदमी लड़ता है। उन निश्चित तौर से वो उन्होंने चढ़ावा चोरी किया और बहुत बड़े चोर हैं।
9: राम मंदिर के डोनेशन के बारे में माननीय योगी जी ने कहा है, कुछ एम्प्लॉयज ने कुछ गलती जो किया है उनके उनको अरेस्ट भी हुआ है। पूरा इंक्वायरी एसआईटी का इंक्वायरी आने में तब बाद में इसका डिटेल आ जाएगा।
3: Now let us take a look at the initial findings of the SIT report. Now, theft by staffers during donation counts. So this is when the theft was carried out. Temple staff are suspected of stealing money while donations were being counted at the Ram Mandir. Criminal misappropriation of the temple donations. So those donations meant for the temple were allegedly diverted or were used unlawfully, and theft was carried out by the staffers who were meant to count those donations at this temple. Criminal breach by of a trust by the staffers. So staff members are accused of violating the trust that was placed in them by misusing and stealing the temple funds. The heat is now on accounting room and the bank counting personnel. So the officials who were involved in counting donations at the temple and the bank are now being investigated. In fact, Champat Rai's driver Tinnu Yadav's role is also under scrutiny. So investigators are now examining Tinnu Yadav's involvement in these alleged irregularities. Remember, he's already been named in the FIR and has also been arrested. With that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. More news and updates will continue on the other side.
10: India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
11: Today's match day preview is presented by Fanatic Sportsbook. Download the Fanatic Sportsbook app today. Winning hits different here. Norway will take on France at Foxborough, Massachusetts, where the winner of the match wins Group I. France is the favorite at minus 150. Meanwhile, Spain will take on Uruguay in Guadalajara. If Spain wins the match, they win the group. Spain is minus 210 to capture 3 points.
12: This has been your official Odyssey Sports match day preview, brought to you by Fanatic Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
13: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
14: The action never stops, and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first, welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
15: I promise to stick to the economic questions, but being a journalist, I have to ask you this. The Ukrainian President Volodymyr Zelensky wrote an open letter. Your first reactions are?
16: What's Iran's position on October 7th? Is the world really sleepwalking into another world war?
15: There's immense pressure on India when it comes to oil. How can both countries handle this Western pressure and sanctions?
16: How vulnerable do you think Europe is today?
17: Jair Bolsonaro being put behind bars, is that something that will be a problem when you meet President Trump?
18: Truth shaped by questions, not by passports. India Today Global.

0: watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
1: Good evening, you're watching India First. I'm Gaurav Sawant. Allegations of mishandling and alleged misappropriation of donation at the Divya Bhavya Ram Mandir, the Sri Ram Mandir at Ayodhya, that shocked devotees. It shocked the nation. Devotees are now seeking receipts for the donations they've made in the past. Some have come forward to say that they donated silver bricks worth crores, but they weren't given a receipt for it. Will they be given one now? The special investigation team constituted by the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, it submitted its preliminary findings. It talked about flaws and negligence in donation handling and supervision. They've sought deeper investigation. Today, on this special broadcast, we get you a snap poll, a special edition of the Political Stock Exchange. C-Voter put questions to respondents, asking them, how seriously do they view reports of alleged embezzlement of donation funds at the Sri Ram Temple at Ayodhya? Another question put to respondents was, who should be held primarily responsible if wrongdoings are actually found in the investigations? Have these allegations actually impacted their trust in the trust, Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra, that manages the handling of donation at the Sri Ram Temple? Are they concerned about possible misuse of donation, especially after these reports and videos of alleged embezzlement? If these allegations are actually found to be true in detailed investigations, would it reflect poorly not just on the temple trust and the district administration, but also on the Uttar Pradesh government? There are other questions. We'll get to the findings of the C-Voter snap poll conducted on the 23rd of June after the SIT submitted its report to the Yogi Adityanath government. Though the findings of the preliminary report haven't officially been made public, but sources tell India Today that the SIT has recommended legal action and detailed investigation into allegations of embezzlement of funds, and also identify those responsible not just for the actual act, but also acts of omission and commission. So to gauge public sentiment on this very emotive issue, and this is emotive at multiple levels, from faith to politics, C-Voter put together a snap poll. They reached out to about 1,600 respondents who responded, and we'll get you their findings. But from the Samajwadi Party to the Congress Party and the Aam Aadmi Party, opposition leaders, they've accused the ruling BJP of failing to safeguard devotees, their offerings and their sentiments. So before we get to findings of the C-Voter snap poll and discuss them in detail, let's quickly listen in, not just to the political reactions, but also reaction of some of the devotees, including one who says that they donated silver bricks to the temple trust, but they were not given receipts. Now they want to know if the silver bricks were actually used in the Sri Ram temple, whether for construction or any other purpose, or where are those bricks now? Listen.
2: राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
3: 2021 में भी इन्होंने एसआईटी बनाई थी। 2021 में मामला उठा था कि अयोध्या के अंदर बहुत बड़े बड़े नेताओं ने और अफसरों ने जमीनें खरीद के घोटाला किया है, उस टाइम भी एसआईटी बनाई थी, कोई एफआईआर नहीं की थी उस टाइम भी। आज तक उस एसआईटी का कोई अता पता नहीं है। ये एसआईटी भी थोड़े दिन में आप सब लोग भूल जाओगे, ये एसआईटी भी कुछ नहीं करने वाली। इस एसआईटी, अभी आपने पढ़ा होगा अखबारों के अंदर, छोटे छोटे आम कर्मचारियों को पकड़ पकड़ के एसआईटी उनसे पूछताछ कर रही है। अरे इतने सालों से इतने महीनों से अगर चढ़ावे की चोरी हो रही थी तो वो छोटे छोटे कर्मचारी बिना किसी बड़े आदमी की शह के तो कर नहीं रहे थे। जरूर चढ़ावे की चोरी ऊपर तक जारी थी। तो बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटे लोगों की जांच चल रही है।
4: ये पूरा देश का मामला था, इसमें हम तो बहुत पहले से, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने भी इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग किया था। ये राज्य का मामला नहीं है, राष्ट्र का मामला है। लेकिन आप बता रहे हो कि साई टी ने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जांच रिपोर्ट सबमिट करने का क्या मतलब है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक सामने बातें ना आवे, ना तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनको हटाया गया।
5: जी, रसीद अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हमें आमंत्रण भी नहीं मिला था जब अयोध्या मंदिर का ओपनिंग किया गया। अगर कोई 200 किलो चांदी हमारा सिंधी समाज पूरे वर्ल्ड से हमारे सिंधी भाइयों ने डोनेट किया तो क्या उनके पास एक इन्विटेशन नहीं जाना चाहिए था? नहीं गया, दान दिया, दान समझ के हम तो भूल गए। लेकिन अब जब टीवी के अंदर ये सारी बातें देख रहे हैं तो दुख हो रहा है कि हमारी चांदी सही जगह गई है कि नहीं गई है। अब हमें उसकी रसीद भी चाहिए और ये भी पता करना है कि वो चांदी कहाँ लगाई गई है, सही यूज में ली गई है कि नहीं ली गई है, या उसे गला करके उसका कुछ अकाउंट मेंटेन किया गया है, तो भी हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि राम मंदिर के लिए गया है।
6: अप्रॉक्स 60 किलो चांदी के आसपास बनती है। एक किलो चांदी का एक कलश था जो हितेंद्र पवार जी हैं ऋषिकेश से, वहां के ज्वेलर्स एसोसिएशन के हेड, उन्होंने भेजा था, वो भी मैंने जमा करवाया। तो जब हमने दिया तो हमने अपने भाव से दिया, लोगों की आस्था से दिया, लेकिन आज की परिस्थिति में हम भी समझ रहे हैं कि ये चीजें कहाँ गई। देखिए रामलला श्री चरणों में वो दीपक यहाँ पर देखिए जल रहा है।
7: ये दीपक आपने दिया था?
6: ये दीपक हमने और मेरी पत्नी ने वहीं पर बैठ के अनिल मिश्रा जी के साथ अखंड ज्योत जलाई थी।
7: तो क्या ये दीपक अभी है वहाँ?
6: अब मैं दोबारा गया तो मुझे वो दीपक वहाँ नहीं दिखा। मैं नए मंदिर में भी मैंने कई बार प्रयास किया, ढूंढा, लेकिन मुझे वो दीपक दिखा नहीं।
8: रिमेम्बर इन द 1950s एंड 60s हिंदी फिल्म्स हैड सॉन्ग्स लाइक राम नाम जपना पराया माल अपना। Sadly, in real life is being mirrored here. At least that's what the allegations are. Donation theft allegations are extremely distressing for any Sri Ram Bhakt. What do respondents say? Let's begin the political stock exchange with the first question. The first question put to respondents by C Voter was, how serious do you consider reports of alleged embezzlement of donation funds at the Sri Ram Mandir at Ayodhya? Watch those responses. 66.4% of the respondents say extremely serious. Now 63% say yes, it is serious. Others 52.6%. Now more than 63% say these allegations are extremely serious. Another 23% say yes, it is quite serious. So now put the two together. More than 86% say it is a very serious issue. But does that seriousness reflect in the pace of the investigations? Joining me on India First is Anurag Bhadoria, spokesperson of the Samajwadi Party. Shantanu Gupta is a political analyst and author. Arvind Kumar Jain is former Director General of the Uttar Pradesh Police. Adwaita Kala is a respected author and political analyst. And I want to welcome all our guests on the show. And I want to begin by asking Anurag Bhadoria. Jo C Voter ke respondents hai, Anurag Bhadoria, they say it's a very, very serious issue. 83% plus. But jo karivai ab tak hui hai, वो सीरियसनेस दिखती है सरकार की कार्यवाही में?
9: देखिए, इस बात को लेके समाजवादी लोग हमेशा से हमने उठाया कि भाई वहां पे दान पात्र में गड़बड़ी की खबर आई, समाजवादियों ने सबसे पहले उठाया, क्योंकि हम लोग प्रभु को मानने वाले लोग हैं। अब ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी, ट्रस्ट के लोगों की बनती थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इसकी अगर इंक्वायरी होती तो मुझे लगता और अच्छा होता। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि एसआईटी बैठ गई और एफआईआर कोई हुई नहीं। एफआईआर होती और एसआईटी होती तो और अच्छा होता। और फिर ये तो विश्व हमारे चूंकि आस्था का विषय है, आस्था में तो कहते हैं ना, वहां पे दान था, दक्षिणा थी, श्रद्धा का सम्मान था, हर सिक्के में भक्तों का विश्वास महान था। अगर उस विश्वास पर किसी ने हाथ डाला, वो सिर्फ चोरी नहीं, आस्था पे प्रहार था। अगर किसी ने भी वहां हाथ डाला है, जिसका भी नाम आता है, जिसकी भी अभी इंक्वायरी में पता चलेगा, जिस तरह के अगर आता है तो जिस तरह के लोग कह रहे हैं, सिंधी समाज की अभी आपने बात सुनाई कि उन्होंने 200 अभी आपके सामने बोला, एक साहब कह रहे थे मैंने वहां पे दिया था, तो सवाल उठता है कि जो लोग इस बात का सवाल उठा रहे हैं तो ये तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है ट्रस्ट की, कि उनके विश्वास को, उन जो हमारे आस्था के लोग हैं जिनकी आस्था है उनके विश्वास को जीतना और उनको बताना कि नहीं आपका उपयोग हुआ है। लेकिन जो फाइंडिंग आ रही है, जिस तरह से पता चल रहा है कि जाते समय तो चेकिंग होती थी, आते समय नहीं होती थी, ये सब सूत्रों से चल रहा है, सूत्रों से ऐसा पता चलता है कि वहां पे गिनती में गड़बड़ी हुई।

0: Thackeray's Shiv Sena, that why isn't the big fishes, you know, being tracked and being...
1: All right, we'll try to fix that connection with Simar Chawla, but that's the latest that's coming in. There were reports that Champat Rai and Anil Mishra have stepped down from their post. But now Champat Rai's family claims that this is not official. He has not stepped down. So there's still no clarity on whether he has resigned or not. But there's a definite pressure on Champat Rai and also Anil Mishra to step down from their posts. So the probe and politics have both intensified in the Ram Mandir donation theft controversy. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody till Monday, with police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them so far. The SIT has flagged several serious irregularities, calling the donation theft willful negligence. There is now uncertainty over the reported resignation of Trust General Secretary Champat Rai. While sources say that he stepped down, taking moral responsibility, his family maintains that there has been no official confirmation and claims that he is a victim of a conspiracy. Even as the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has stepped up its attack on the BJP. Congress MP Priyanka Gandhi Vadra has demanded a transparent investigation instead of any cover-up, saying that those found guilty must face the strictest punishment. She also questioned whether junior employees could pull off such a heist, demanding probe into the role of influential individuals. Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav has mocked the ruling party, calling the controversy the BJP's Lanka Kand. Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal, who visited Ayodhya on Friday, has also alleged that those behind the theft are conspiring against Chief Minister Yogi Adityanath.
2: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को इनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है, वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक हैं। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं?
3: अगर 2000 करोड़ की बात सही है तो ये पैसा कहां गया? ये पैसा बीजेपी ने चुनाव में इस्तेमाल किया, अपोजिशन की पार्टियां तोड़ने में इस्तेमाल किया, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के सांसद विधायक तोड़ने में उसका इस्तेमाल किया, उसकी जांच होनी चाहिए।
4: बड़े पैमाने पर लूट हुई है, ये लूट नहीं है। उपेंद्र मिश्रा जी स्वयं इसको डाका की संज्ञा देते हैं, he has admitted कि ये डाका है। तो डाका कहाँ पे है? प्रभु श्री राम के मंदिर में है। मंदिर से इनकी सरकार पूरे देश में बनी है और मंदिर के द्वारा ही इनकी सरकार जाएगी पूरे देश से। पहले शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश से, जहां पर 27 में चुनाव होने जा रहा है। वहां की जनता पूरी तरह से विश्वास खो चुकी है बीजेपी सरकार से।
5: राम मंदिर के डोनेशन के बारे में माननीय योगी जी ने कहा है, कुछ एम्प्लॉयज ने कुछ गलती जो किया है उनके उनको अरेस्ट भी हुआ है। पूरा इंक्वायरी SIT का इंक्वायरी आने पर तब बाद में इसका डिटेल आ जाएगा।
1: And some more breaking news coming in. Veteran Tamil actor, director K. Bhagyaraj passes away. He was the king of screenplays who is no more. Tamil cinema loses legend K. Bhagyaraj. Veteran filmmaker K. Bhagyaraj breathes his last. The actor, director and screenwriter has passed away at the hospital. He was an iconic Tamil filmmaker who has now died, and he leaves behind a rich cinematic legacy. So Tamil film industry mourns the loss of K. Bhagyaraj, and condolences also pour in for the actor, director K. Bhagyaraj, who's left behind a legacy of his own. So it's a big loss for the Tamil industry. Veteran Tamil actor, director K. Bhagyaraj has now passed away.

0: And some more breaking news coming in. It's an India Today mega exclusive news break. Accused in the Ram Mandir theft row, his 40 lakh rupee house is now under spotlight. India Today is at Anukalp Mishra's residence. Family refuses to open door and speaks from inside. Sister claims Anukalp Mishra being falsely implicated. Anukalp's family claims that 40 lakh house was bought 2 years ago. And Anukalp's sister denies any wrongdoing, and the accused sister alleges that there's a conspiracy against the family. The family also links allegations to ongoing property dispute, and the sister has also rejected the aunt's claims that cites 10-year-old family legal dispute. So the Ram Temple donation theft probe continues, and India Today in fact reached Anukalp Mishra's 40 lakh rupee house, where the sister refused to open the gate but in fact spoke from inside. Listen in.
1: इस वक्त मैं मौजूद हूं अनुकल्प मिश्रा के घर पे. वही अनुकल्प मिश्रा जिनको अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया है. ये आरोप लगे हैं कि राम जन्मभूमि चढ़ावा चोरी में उनका एक सक्रिय रोल था, और नोटों की जो गिनती होती थी वो उनकी देखरेख में होती थी. उनका ये काम था कि नोटों की देखरेख की जाए, गिनती की जाए और बैंक में उसको जमा किया जाए. देखेंगे आप पीछे, ये वो घर है जहां पर आज तक की टीम इस वक्त मौजूद है. बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 साल पहले ही यहां पर जो पूरा परिवार था वो शिफ्ट हुआ था, और उसके पहले ये परिवार कहीं और रहता था. जब से ये तमाम खबरें सामने आई हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, तब से लगातार ये आरोप जो है उन पर लग रहे हैं कि उन्होंने ही चढ़ावा चोरी में एक सक्रिय रोल जो है वो निभाया. हालांकि घर पे ज़्यादा अभी कोई है नहीं. हम कोशिश करेंगे एक बार बात करने की कि क्या परिवार वाले हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं. कोई होगा यहाँ पे? मैम आप हैं यहाँ पे, आप कौन हैं अनुकल्प मिश्रा की?
2: हम उनकी बहन है, वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा
1: है. आप बहन है उनकी, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है. ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में. आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है. नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, उनका केस चल रहा है. उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने.
1: हाँ नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया, तमाम चीजें, उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं?
2: वो सब फंसाया जा रहा है, उनका केस चल रहा है, उसी में वो भी आपके बीच में बोल रही है कि फंस जाइए. लोग पटीदार है, वो लोग यहाँ रहते भी नहीं है, हम लोग से नहीं मतलब है उनसे.
1: तो आपको क्या लगता है कि गलत तरीके से आप लोगों को फ्रेम किया जा रहा है? आप क्यों, लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? उनका वो वहाँ पे थे, गिनती करते थे नोटों की, आपको लगता है कि वो इन्वॉल्व नहीं थे इसमें?
2: जी, इसमें वो कुछ नहीं था, बस फंसाया जा रहा है, बस.
1: आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर आप लोग कितने समय पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं?
2: यहाँ 2-3 साल से रहे, यहाँ तो हम 10 साल से रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, पूरी फैमिली हम लोग की ही रहती है.
1: जब ये सब खबरें सामने आई और आप लोग की बात भी हुई होगी जो अनुकल्प से, तो क्योंकि कल गिरफ्तारी जो है वो परसों ही हुई है, तो उसके पहले उनका क्या रुख था, वो क्या कह रहे थे आपसे परिवार से?
2: जी वो कुछ नहीं कह रहे थे, वो लोग को फंसाया गया है, बस इतना कह रहे हैं.

0: But the first information which we are receiving that these three people have not directly linked in the education system of the Maharashtra. Now the police will definitely find out that who is that person in the education system of the Maharashtra within the system who is helping this kind of person, helping to the paper leak. So definitely now the next step of the police will be to find out that person. And the most important thing, police will now form a several teams, and we have to see that where the TET paper leak links goes in the Maharashtra, or does it spread in the other parts of the countries as well, Suesha.
1: All right, Dipesh Mehi, thanks for getting us those details. Meanwhile, the NIA, that is the National Investigations Agency, has charge-sheeted three more accused, including an absconder. This is in connection with the November 2025 car bomb explosion that had happened near Red Fort that claimed the lives of 11 when it happened in the national capital in November 2025. In a supplementary charge sheet, NIA has named Zameer Ahmed Ahangar, Tufail Ahmed Bhatt and Muzaffar Ahmed, all from Jammu and Kashmir, as accused. This takes the number of persons charge-sheeted in the case to 13 now, including the prime accused, Dr. Omar Un Nabi. Let me take this to my colleague Arvind Ojha, who's joining us on the broadcast. Arvind, the aur kya jankari aa rahi hai, kis tarah se investigation aage badha hai? Ab NIA ne supplementary charge sheet mein teen aur accused ko name kiya hai, aur ye sab Jammu aur Kashmir se hai.
2: Bilkul, aur isme do dekhiye, isme jo teen accused hai unke naam Muzaffar Ahmed hai, Muzaffar Ahmed absconding hai, जो कि इस पूरा जो मॉड्यूल बना था उसका वन ऑफ द मास्टर माइंड है. ये MBBS डॉक्टर है. मुजफ्फर अहमद को NIA ने एब्सकॉन्डिंग घोषित कर रखा है. उसके अलावा दो और जो अक्यूज्ड हैं जिनके नाम जफीर अहमद अहंगार और तुफेल अहमद भट्ट है, इनको भी नेम्ड किया है. तो कुल मिलाकर अब तक 13 जो अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ चार्जशीट जो NIA है उसने दाखिल कर दी है, जिसमें एक अक्यूज वो उमर नबी था, जो डॉक्टर था जिसने कार से विस्फोट किया था. NIA का कहना है कि इस पूरे मामले में साइंटिफिक तौर पर इन्वेस्टिगेशन की गई, जियो लोकेशन मैपिंग से इन्वेस्टिगेशन की गई. उसके अलावा जो इसमें पूरी फंडिंग हुई थी जो ये पूरा आतंकी मॉड्यूल बनाने के लिए, उसको एस्टेब्लिश किया गया है. और अब तक कुल मिलाकर 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. कई ऐसे इसमें अक्यूज्ड हैं जो पहले आतंकी संगठन लश्करे तोयबा से जुड़े हुए थे, उसके ओवरग्राउंड वर्कर थे, लेकिन सबको एक साथ मिला करके जो मुजफ्फर है, जो फिलहाल एब्सकॉन्डिंग है, उसने एक नया मॉड्यूल तैयार किया था जो देश में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने वाला था. लेकिन उसके पहले ही जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया था. हालांकि उसमें से एक अक्यूज उमर नबी वो एब्सकॉन्डिंग था जो रेड फोर्ट के पास जिसने कार में विस्फोट कर दिया था. तो तीन जो नए अक्यूज्ड हैं, जिनमें दो अक्यूज्ड अरेस्टेड हैं, एक एब्सकॉन्डिंग है, उनके खिलाफ NIA ने चार्जशीट दाखिल की है.
1: जी अरविंद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए. More breaking news coming in. After quitting DMK-led alliance, MDMK chief Vaiko has hinted at a tie-up with TVK. Yes, he said that we'll support Vijay in the state of Tamil Nadu, led by TVK in the elections and local body elections in the upcoming polls. That's the word coming in from Vaiko, where he said that we'll support the TVK in the local polls that are due to happen. MDMK has hinted at a tie-up with Vijay's TVK. Let's listen in to what he said.
3: இருந்தது நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி விட்டோம், விலகி விட்டோம். அப்படியானால் இடைத்தேர்தல்கள் வருகிற போது நீங்கள் எந்த முடிவை மேற்கொள்ளப் போகிறீர்கள் என்ற கேள்வி நியாயமாக எழும். நாங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம். உள்ளாட்சி தேர்தல் வருமானாலும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தோடு தோழமை ஏற்படுவதற்கு

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं ये विश्व हिंदू परिषद ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद VHP पत्नी पूनम देवी पुत्र रवि यादव ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुई रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मनीष यादव जो उनका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: उनकी बहन है वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है
3: आप बहन है उनकी उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में आपका क्या पक्ष है आप क्या कहना चाहेंगे
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है नेहा मेरी कुछ नहीं है उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है उनका मैटर चाचा चाची का है वो अलग जाने
3: हाँ नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया तमाम चीजें उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं
2: वो सब फंसाया जा रहा है उनका केस चल रहा है उसी में वो भी आके बीच में बोल रही है कि फंस जाए ये लोग
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev who was in charge of the temple CCTV and counting room Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है उसकी डकैती आपके सामने है और हम नहीं कह रहे शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई जो महिपाल सिंह था जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है दान का पैसा चुराया जा रहा है एक्शन नहीं लिया गया महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए
0: ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट इज वाउ टू इंश्योर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड
6: निष्पक्ष जांच होगी FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो ये सरकार इसने निर्देश दिया
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: And well, another revelation that has come to light in the Lohagarh murder case, police are probing whether Ketan's hair patch was a trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 or 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call off the engagement to avoid social stigma. We're getting you this report with all the latest developments.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
8: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
9: छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
8: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
9: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का बिल्कुल बड़ा बच्चा चल कर देते थे ना
0: पुलिस हाउएवर से द हेयर पैच अलोन मे नॉट हैव बीन द मोटिव फॉर द मर्डर. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
10: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिए
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट अ सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
11: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
12: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
13: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से
12: जी मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज आल्सो अपॉइंटेड 2611 प्रोसिक्यूटर्स उज्ज्वल निकम as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains. Will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: And well, the Congress party has appointed its Lok Sabha MP Manikam Tagore as the president of Tamil Nadu Pradesh Congress Committee with immediate effect. He succeeds K. Selva Peruthangai. That's the latest decision that is coming in from the Congress. The top leadership has now appointed its Lok Sabha MP Manikam Tagore as the president of Tamil Nadu Pradesh Congress Committee with immediate effect. Let me bring in my colleague Anagha Kesha with further details of what led to this decision and how is this being perceived.
14: In fact, Savla Perundugai had tendered his resignation 2 weeks back. Even before the assembly election results came out, Savla Perundugai had made it clear that he wants to resign from his post as the Congress's president. Savla Perundugai was very close to M.K. Stalin, which was the DMK party, the erstwhile alliance partner of the Congress. So therefore, as the alliance partners also changed, there was a change in leadership in the state. Manikam Tagore was an advocate of TVK for the Congress party. Even before the alliance happened, Manikam Tagore and Praveen Chakravarti, it was these two leaders who were voicing out

0: centers, and therefore there was a shift in power structure with Manikam Tagore now, who is going to lead the Congress in the state.
1: All right, Anika, many thanks for getting us those details. Another alleged paper leak that has once again put the country's examination system under scrutiny, coming close on the heels of the NEET controversy. This time, it is Maharashtra's TET exam that has been postponed after police foiled an alleged paper leak this just hours before the test. Over 6.12 lakh candidates were set to appear at 1,728 centres across the state. Police have arrested three accused who allegedly travelled from Delhi with the leaked papers. Two of them, Rajiv Shah and Akash Kumar, are from Bihar, while Dheeraj Kumar is from Haryana. The alleged kingpin, however, remains absconding. The incident has now snowballed into a political flashpoint, with opposition parties accusing the government of repeatedly failing to conduct examinations without any disruption. Shiv Sena UBT leader Aditya Thackeray, who attacked the BJP, saying Maharashtra has seen leaks in NEET, MPSC and now TET. He alleged that repeated paper leaks are destroying students' futures, tarnishing the state's reputation and forcing the youth onto the streets. NCP-SCP MLA Rohit Pawar, who alleged that the government's response mirrors the NEET episode, calling the CBI probe a mere eyewash. He demanded accountability and said those responsible for the alleged TET paper leak must resign.
2: कोई भी चोरी करता है तो भाजपा सरकार बढ़ती देता है. तो 2026 में वापस एक बार NEET का पेपर फूटा. वो फूटने के बाद आपने देखा होगा लोगों का बहुत बड़ा गुस्सा दिखाई दिया. तो ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिखाने के लिए सीबीआई की इंक्वायरी सब जगह लगा दी. लेकिन इंक्वायरी कितने दिन चली? 15-20 दिन. अभी इंक्वायरी का क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा. उसी में टीट का पेपर अभी जो फूटा है, 4.5 लाख विद्यार्थी उसके एग्जाम वहां पे देते हैं, तो उसके कारण जो मेंटल प्रेशर है बच्चों के ऊपर बहुत बढ़ जाता है. और कभी कभार जैसे नीट में 22 बच्चों ने वहां पे आत्महत्या की, और वही चीज अगर इसमें होगी तो उसके लिए पूर्णपणे ये सरकार जिम्मेदार होगा. सरकार ने जिम्मेदारी लेके जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है, मंत्री हो या कोई भी हो, उसका राजीनामा लेना चाहिए. हम सबकी मांगनी है.
3: नहीं नहीं, क्या बदतमीजी चल रही है. और एक दिन और एक पेपर लीक. इस बार भिवंडी में महाराष्ट्र के शालेय शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे को इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए. देश भर में पेपर लीक बढ़ते जा रहे हैं. इस सरकार को एक पेपर ढंग से लेना नहीं आता. आज ये पेपर लीक हुआ है टीचर के पेपर के लिए. अगर टीचर भी सेफ नहीं, स्टूडेंट भी सेफ नहीं, तो इस देश में सेफ है कौन?
4: एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद ये पेपर लीक होने की घटना सामने आती है तो हमें शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए. महाराष्ट्र जैसे राज्य में टीटी का पेपर लीक होना ये बड़ी दुर्भाग्य बात है, ऐसा मैं मानता हूँ. ये सरकार की नाकामयाबी है. ठीक ढंग से एग्जाम भी नहीं ले सकते. अगर तुमको ठीक ढंग से एग्जाम भी लेना नहीं आता है तो सरकार करके उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार ये सरकार के पास है क्या?
5: मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं महाराष्ट्र सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने समय रहते पेपर लीक का यह प्रकरण पकड़ लिया और उस एग्जाम को स्थगित कर दिया. एग्जाम होने के बाद अगर पेपर लीक का पता चलता तो पता नहीं कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता. अब समय आ गया है कि कोचिंग संस्थानों की तरफ से जो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, उनके यहाँ कोचिंग लेने वाले बच्चों को पास करने की जो एक धुन लगी है और जिसकी वजह से वो पेपर लीक करने का एक पाप कर रहे हैं, ऐसे तमाम संस्थानों के कामकाज के ऊपर ध्यान दिया जाए और पेपर लीक करने वाले पूरे माफिया तंत्र को खत्म करने की अगर आवश्यकता पड़े तो सख्त कानून बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे जो ईमानदारी से, निष्ठा से परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करने की हिम्मत न करें.
6: डीसीपी झोन 2 पवन बनसोड आणि त्यांची टीम यांनी एक ट्रॅप लावला. त्या ट्रॅपच्या अनुषंगाने सकाळी 17 ते 11 दरम्यान एका जागेवर तिने ट्रॅप लावला. त्यामध्ये 3 लोक हे पेपर विकण्यासाठी, जो उद्या होणार आहे टीईटीचा पेपर विकण्यासाठी आलेले, त्यांना आढळले. त्यांना जी पूर्व माहिती मिळाली होती त्या अनुषंगाने तिथे ट्रॅप लावला. ते 3 लोकांना ताब्यात घेतलं. त्यांच्या अंगधर्तीमध्ये त्यांच्याकडे एकूण उद्या जे पेपर होणार आहेत त्याचे 4 सेट हे पेपर मिळाले. त्याचबरोबर इतर वस्तू, मोबाईल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरे हे मिळालं.
7: 28 जून 2026 यानी कल जो टीईटी की एग्जाम

0: मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए।
1: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से?
0: जी, मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। जी, उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है।
1: एसआईटी की मांग की आपने?
0: सर, ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है।
2: The Maharashtra government has also appointed 2611 prosecutors Ujjwal Nikam as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains: will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
3: And while the US envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and Prime Minister Modi and given a big update about the India-US trade deal, at the same time, US Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-US ties? We're getting you this special report.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं. ये विश्व हिंदू परिषद, ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव, विश्व हिंदू परिषद VHP, पत्नी पूनम देवी, पुत्र रवि यादव. ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुई, रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मनीष यादव जो उनका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया. कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है.
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: उनकी बहन है, वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है.
3: आप बहन है उनकी, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है. ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में. आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है. नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने.
3: हाँ, नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया, तमाम चीजें, उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं?
2: वो सब फंसाया जा रहा है, उनका केस चल रहा है, उसी में वो भी आके बीच में बोल रही है कि फंस गए ये लोग.
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev, who was in charge of the temple CCTV and counting room. Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein jo seedha RSS aur PMO dekhta hai, उसकी डकैती आपके सामने है. और हम नहीं कह रहे, शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई. जो महिपाल सिंह था जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है, दान का पैसा चुराया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया गया, महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया. तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा, इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे.
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला. तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए.
0: ऑन द अदर हैंड, योगी गवर्नमेंट इज वाउ टू इंश्योर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड.
6: निष्पक्ष जांच होगी, FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया.
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Joining me on India First is Sri Venkateshwar and Joint Secretary and National Spokesperson of the Vishwa Hindu Parishad. Sanju Verma is National Spokesperson of the Bharatiya Janata Party. Anurag Bhadoria is the Spokesperson of the Samajwadi Party. Brijesh Kalappa is the National Spokesperson of the Congress Party. Shubh Rastha is a respected author, political analyst who joins us on the show. Welcome. I want to begin by asking Sri Venkateshwara, sir, have Champat Rai and Anil Mishra resigned or are they still clinging on to the trust despite this massive breach of trust?
8: I just have to rely on you know, press reports only. I have not got any direct information whatsoever from our leadership as to whether Champatji has resigned or not. But you know, a little while back, I you know, read a couple of news outlets just said that he has resigned.
7: However, Gopal Rao, a trustee, we spoke to him just a short while back, and he said there is a lot of pressure on him to resign, but he sees this as a conspiracy and that Champat Rai hasn't resigned so far. We shall wait for an official confirmation on this. But Sanju Verma, opposition says 8 employees being arrested is an eyewash, a cover-up to shield the higher-ups in the chain of command at the trust. Why have Champat Rai and Alok Mishra not been held accountable yet, madam?
9: You know, Gaurav, first things first, as a practicing Hindu, I'm completely pained at the revelations that have been coming out in the public domain over the last 72 odd hours. Because for us, Ram Mandir is not just about Aastha. It is about the civilizational battle that Hindus won after 500 long years. And so many people have sacrificed for this cause, including Mr. Champat Rai. I was listening to one of your discussions hosted by you, where you rightly said that Champat Rai has been called, you know, Ram Lalla ke Patwari, because he used to maintain the books of accounts and the entire documentation in the run-up to that famous Ram Mandir verdict in 2019. Yes. Be that as it may, does the BJP stand for accountability and transparency on this issue? Taki doodh ka doodh aur pani ka pani ho jaye? Oh yes, that is point number one. Point number two, SIT report, the contents of that have not yet come out in the public domain. So my humble request is, let the contents of the SIT report be made public by the relevant authorities. Before that, to jump the gun and assume that Champat Rai or Anil Mishra are guilty, I think that is being unfair. I would have said this for anyone.
7: All I'm saying is, लोग क्या कहते हैं, लोक मर्यादा कितनी बड़ी बात होती है, यू नो दैट वेल. बट लेट मी ब्रिंग इन अनुराग भदौरिया इनटू दिस कॉन्वर्सेशन. अनुराग भदौरिया, चंपत राय के खिलाफ अभी कोई सबूत सार्वजनिक नहीं है. भारतीय जनता पार्टी का कहना है एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो जाए, उसके बाद कार्रवाई की जरूरत है तो कार्रवाई होगी. 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जिनके खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं. क्या आप इससे संतुष्ट हैं?
10: देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान के पता होना चाहिए कि दान पात्र में चोरी की बात तो समाजवादियों ने उठाई थी. भारतीय जनता पार्टी लगातार डिबेट में आई नहीं, आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के दर्शन हो रहे हैं. दूसरी बात, जिस तरह के वहाँ पे 8 लोगों के ऊपर FIR हुई है, उनको गिरफ्तार किया है, वो तो बहुत निचले लेवल के कर्मचारी हैं. लेकिन जिनके देखरेख में, चाहे चंपत राय जी हो, मिश्रा जी हो, इनके देखरेख में तो सारा काम चल रहा था, फिर ये जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं भाई? आप बताइए, चंपत राय जी का ड्राइवर यहाँ पे वो करोड़ों का मालिक हो गया, क्या चंपत राय जी को पता ही नहीं चला? फिर वो कैसे हो गया? तो सवाल उठता है कि वो अपने पद पे बने रहेंगे तो आपको इंक्वायरी करने में भी दिक्कत होगी. उनको सबसे पहले अपना ही अपनी इच्छा अनुसार भाई, ये आस्था को देखते हुए, सनातनियों की भावनाओं को देखते हुए, विश्वास को जीतने के लिए उन्हें अपने पद से हट जाना चाहिए था और कहना चाहिए था निष्पक्ष इंक्वायरी हो, मैं अपने पद पे नहीं रहूंगा जब तक कि इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाए, जब तक मैं हमारे ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है उसकी इंक्वायरी हो जाएगी, उसके बाद मैं देखूंगा. लेकिन ऐसा तो उन्होंने नहीं किया.
7: देना चाहती है संजू वर्मा आपको उत्तर देना चाहती है. 2 पहलू आपने उठाए, संजू गो अहेड.
9: यू नो, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किस मुद्दे पर नेशनल टीवी पर बात करेंगे या नहीं करेंगे, ये बीजेपी तय करेगी, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तय नहीं करेंगे.
10: प्रभु के नाम पे तो बोलूंगा.
9: मैंने
10: प्रभु के नाम पे तो बोलेंगे.
7: ओके सर, लेट मिस वर्मा कंप्लीट अ पॉइंट, आई विल कम बैक टू यू. गो ऑन मैम.
9: अनुराग भदौरिया, मैंने आपको नहीं टोका, अभी अपनी बारी पक्का इंतजार करिए.
10: जय सियाराम, जय सियाराम,
9: जय
10: सियाराम.
9: प्लीज नाउ लेट मी स्पीक. गौरव, मुद्दे की बात यह है कि जो लोग आज राम भगवान की आस्था को लेकर बीजेपी पर उंगलियां उठा रहे हैं, बीजेपी पर लांछन लगा रहे हैं, ये वही समाजवादी पार्टी है जब इनके अलायंस पार्टनर उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म इज इक्वल टू डेंगू, मलेरिया, रेबीज, कोविड, तब अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गया था, अनुराग भदौरिया के मुंह में दही जम गया था, जब मद्रास हाईकोर्ट के जज जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ इंपीचमेंट पिटीशन फाइल की, उसमें अखिलेश यादव का भी नाम है, और क्यों पिटीशन फाइल की? सिर्फ क्योंकि जीआर स्वामीनाथन ने कहा था कि दीपथून पर दीपम जलाना हिंदुओं का हक है।
7: ठीक, जल्दी से जवाब दीजिए। वुड ब्रिंग इन ब्रिजेश कलप्पा इनटू द डिस्कशन, बट क्विकली 30 सेकंड में सर।
10: नहीं, संजू वर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि फ्यूचर में डीएमके के साथ कोई उनका गठबंधन नहीं होगा। डीएमके चूंकि राम विरोधी के बारे में बात करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको चिमटे से भी नहीं छुएगी, ये आपने बोला है ना। चलिए हम देखते हैं, आप तो वो लोग हैं जो प्रभु के राम को यहाँ विस्की में लेके बात करने वाले पार्लियामेंट के अंदर में नरेश अग्रवाल को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आप तो उन पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना के चला रहे हैं जो वहां जिस तरह के लोग कहते थे प्रभु राम दशरथ के बेटे नहीं है। निषाद जी ने कहा था कि नहीं कहा था उनके साथ? मेरा वो मुद्दा नहीं है संजू जी फटकारी, मेरा मुद्दा है प्रभु राम के मंदिर के दान पात्र चोरी हुई है,
7: वो मेरा मुद्दा है।
10: उसमें मुझे उसी मुद्दे पर क्यों बच रही है, उसमें संजू वर्मा क्यों नहीं बोलना चाह रही है? वो दुनिया की बातें करेंगी, वहाँ यहाँ पे चेन्नई पहुंच गई लेकिन अयोध्या तक नहीं पहुंच पा रही है कि अयोध्या में कैसे चोरी हो गई।
7: ओके, टाइम आउट, टाइम आउट।
9: आपके नेताओं ने बात उंगली उठाई है, इसलिए आप मुझे भाषण मत दीजिए।
7: I'll come back to this point. I want to quickly bring in Brijesh Kalappa into this conversation. Brijesh Kalappa, wear your legal hat along with your political hat for a moment, sir. The SIT found lapses in the terms of procedure. CCTV camera images caught some theft. 8 arrests have been made. But, you know, on the basis of irregularities that have been revealed so far, information that's in public domain so far, should the General Secretary of the Trust also have either been named or brought into the ambit of the probe, and should he have stepped down in case he hasn't stepped down so far, as Gopal Rao insists?
11: See, Gaurav, the first thing is that the very fact that there have been several temples in the country which have been operating in a very clean, neat and transparent manner makes it obvious that the safeguards which were required to be implemented have not been implemented. And why are they not implemented? The answer is obvious, because the organizers or the trust officials are used to cheating public funds for not just now, but since the year 1990 when the Ram Janmabhoomi movement began. Because the fact that, you know, these funds have today been misused, this opens up a larger question that what happened to the huge amount of funds which have been collected by the BJP, the RSS and its cohorts from 1990 onwards? Where, what has happened to all that money? Now, okay, today is a gentleman, Mr. Champat Rai, who has the ability to sign checks worth 35,000 crore. And right under his nose is this massive thieving going on. And he appears to be, you know, completely unaware of it, or he completely is completely useless. So either whether he is useless or whether he is conniving with them, the point is that certainly he must go. You must remember,
7: he must go. You say
11: just one moment. Fair enough. Just one moment, because I was involved with the Kerala election. I must point out that anybody who steals the money of the deity is bound to be thrown into the dustbin of history. This is what happened with the CPM in Kerala, and this is what is going to happen with the Narendra Modi government in Delhi and the Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh. But as far as the Bharatiya Janata Party is concerned, their main job in this entire debate and in debates hereafter will only be rhetorical and will only be a diversionary tactic. They don't want the truth to come out. So they
7: sir,
11: will do everything. They will
7: you and I, we the people of this country want the truth to come out. And truth has to come out, sir. Ram Droh cannot be permitted anytime.
10: नहीं, इनसे ये पूछिए, ये चंदा चंदा चोरी जो वहां पे दान पात्र में चोरी है उसके साथ है या उसके खिलाफ है? संजू वर्मा जी, समाजवादी के जो आवाज उठाई उसके साथ आप हैं कि नहीं है कि वहां पे दान पात्र में चोरी हुई है? बस इतना बता दीजिए, जो हमने आवाज उठाई मेरे साथ है या नहीं है? मेरे साथ
7: ओके संजू वर्मा, 30 सेकंड्स बिफोर आई ब्रिंग इन शुभ रास्ता।
9: लेट मी रीइंफोर्स व्हाट आई सेड एट द स्टार्ट। आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू एंड आई बिलीव, यू नो, थैंक्स टू अकाउंटेबिलिटी व्हिच बीजेपी स्टैंड्स फॉर, वी आर पेन्ड बट वी आर हैप्पी दैट दिस एंटायर इशू हैज कम आउट इन द पब्लिक डोमेन। लेट द गिल्टी बी पनिश्ड Let there be no room for any leniency. But what I'm saying is, I don't need referencing Sanatan Dharma from hypocrites of Akhilesh Yadav's party.
10: Ab maine aapse jo pucha us sawal ka jawab nahi diya.
7: Fair enough. I want to quickly move forward and bring in Shubhrasta into this conversation, who's been very patiently listening to this entire conversation. And Shubhrasta, is the probe in the right direction, or is there merit in the opposition saying that it's only those 8 employees, that the chain of command, those who are responsible for acts of omission and commission, are they now being, are they being shielded? Why haven't they been booked yet?
12: Gaurav, a toddler like Ram Lala had to fight his own case in court for it was justice done after 500 years. So patience is something that Ram has taught all of us, as Hindus, practicing or non-practicing. So I'm not going to go into the fact that what has happened is extremely unfortunate. We all know it is unfortunate. I don't think any one of us sitting here in the panel is going to justify, what has happened.
7: Sin.
12: However,
7: Ram Dro.
12: Let me also. Yes. I agree with you. It is Ram Dro. Let me also put it out at the outset that I, as a practicing and a political Hindu, will not allow Samajwadi Party or the Congress Party to take a moral high ground on this. Rahul Gandhi or Akhilesh Yadav, none of them have even visited the temple. What locus standi do they have to tell us whose donations has, been misappropriated? This third point that I want to, talk about here is this, Gaurav. This is an opportunity to open up the whole conversation around freeing the temples. Yes, it is a huge setback to that movement because what has happened, via the trust needs to be not only investigated, but, justice brought. But it also tells us that because government interference, if at all I were to, parrot the line of the opposition, if it's the government which is involved and which is why, there are these discrepancies, which is, we need to all the more free the temples absolutely from this control. Last point, Gaurav. Same show, a couple of months ago, we debated Waqf Bill.
10: Yes.
12: It was a conversation about Muslim properties. Look at the Samajwadi Party and the Congress Party then and look at them now.
7: Okay.
12: The point.
7: I'll come on the Waqf.
12: It is a problem. It is a problem in a Hindu household. We will figure it. Of course, people who have been responsible are at the moment not, put in jail. It will happen eventually because
7: those who are responsible will be put in jail. You're accusing the Samajwadi Party and Congress of double standards. Anurag Bhadauria, आप इसका उत्तर देना चाहते हैं?
10: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. Shubhrasta जी ने बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल हिंदू है. जब राम के घर में चोरी हुई तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने. जब आस्था पे चोट पहुंची करोड़ों हिंदुओं की, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादियों ने. समाजवादी कभी प्रभु के नाम पे राजनीति नहीं करते ना वोट मांगते. प्रभु मेरे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय कभी नहीं हुए. इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हम वो लोग हैं जो प्रभु को कणकण में खोजते हैं. आप प्रभु को कणकण में नहीं खोजती है. मैं कह रहा हूँ, आपके घर के मंदिर में भी आप शांति से बैठिए और यहाँ पे ध्यान लगाइए और प्रभु को याद कीजिए.

0: अनुराग भदौरिया, 2 करोड़ की भूमि, आरोप ये है 2 करोड़ की भूमि 20 करोड़ या 18 करोड़
1: 9 करोड़ की 55 करोड़
0: में बेची गई।
1: तो ये दस्तावेज,
0: क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या सीबीआई मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए या कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच?
2: तो गौरव जी, मैं
1: आपसे गौरव जी पहले से बोल रहा हूँ, संजय सिंह अपने डॉक्यूमेंट्स लेके अभी से नहीं, कितने साल हो गए चुनाव के पहले से, जब ये जमीन खरीदी गई 2021 की बात है 22 की, उन्होंने पेपर दिखाए तो उस समय भी हम लोगों ने बोला था। तो क्या इतने दिनों में ये इंक्वायरी नहीं हो सकती थी? क्या ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि चोरी कैसे, ये जो जमीन का घोटाला कैसे हुआ? अभी जब मंदिर की चोरी की, अब जब उसमें दान पात्र में चोरी किया, बाद दोबारा से समाजवादी ने उठाई, तब एसआईटी ने बोला वो अभी जमीन के पेपर लेके आइए। ये जमीन के पेपर तो पहले भी मांग सकते थे ना, जब ये उठाया गया था मुद्दा कि जो सस्ती जमीन महंगे में खरीदी जा रही है, आज की बात तो है नहीं, ये सालों की बात हो गई थी। तो सवाल उठता है कि आप इसकी क्यों नहीं, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में इसकी इंक्वायरी, मैंने इसकी इंक्वायरी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
0: A CBI प्रोब और a कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब इन द लैंड एस्पेक्ट ऑफ दिस, बिकॉज इनिशियली it was the same logic that was given, that those who oppose Lord Ram are raising these questions, but now that these questions are being raised with documents, should they be probed, sir, in a court monitored investigation?
3: See, I'd only like to say this much, that the moment you want to protect people, and I have been in government, I've been out of government, I've seen, you know, how things work, I've been a lawyer, I know that if you want to protect people, the first thing that a government will do is to have an SIT, and that SIT is going to name the lowliest of individuals and then put them behind bars and then close the story, right? And this is exactly the same thing that is happening in Uttar Pradesh. Point is this, that who has facilitated this massive loot? First. Second question, when Prime Minister Modi comes, does the Pran Pratishtha, does the inauguration, does every single thing, why is he keeping quiet? Is he not ashamed of the fact that such a huge amount of money has been stolen from right under his nose? Second fact.
0: Okay.
3: Third point is,
0: Sanju Verma wants to respond on your naming the Prime Minister.
3: Now, here is a trust, Gaurav. Sorry, just one more point. Here is a
0: just,
3: trust,
0: let, just give him 30 seconds to complete his point.
3: Here
0: 30 seconds,
3: trust,
0: he's completing his point.
3: Which
0: I'm coming to you, man.
3: Registered. The Ram Janam, the Ram Temple Trust is registered. Can you imagine the RSS is still unregistered? Can you imagine the kind of money that they are stealing away?
0: Sanju Verma wants to respond. Sanju Verma wants to respond. Go ahead, ma'am.
2: Yes. First and foremost, I take strong objection to the kind of language used for Prime Minister Narendra Modi by the Congress spokesperson, but I expect nothing better from him, because आखिरकार तो ये राहुल गांधी के दरबारी हैं, तो उन्हीं की भाषा बोलेंगे। The apple does not fall far from the tree. But let me come to the moot point here. The moot point is an allegation about zameen ghotala in Ayodhya has been made. But I ask Gaurav to you, we've done so many debates on other issues also, revolving around criminality and usurping of land. There has to be a money trail that has to be established by the person who's making the allegation. There has to be a mala fide intent that has to be established. Proceeds of crime need to be established. Sanjay Singh is himself out on bail in the Delhi liquor gate scam. Arvind Kejriwal khud Delhi liquor gate ke aaropi hai, aur ye BJP ko nasihat de rahe hai on corruption aur other.
1: The second.
2: I mean, hypocrisy of the Aam Aadmi Party is commendable indeed, and I say that
0: fair
2: with
0: enough.
2: A pun.
0: Shubhrasta, Mahipal Singh, and that's a name we've been hearing for quite some time, had blown the lid of the scam, as it's being called, even earlier. So is there merit in the demand for a total overhaul and a total audit of donations from the time of Pran Pratishtha, whether it is cash donation, gold, silver and other jewels that were donated?
4: Yes, I think that's a fair demand. I don't have any issue with that demand. But let me also tell you that this whole conversation about, the probe not happening the way it should, as the opposition is trying to say, let me also put it out, put the record straight. legally and procedurally, I think the government is absolutely right and has not faltered at any point in time. For an FIR to be registered, somebody from the trust had to come forward. Because nobody came forward, an FIR couldn't be registered. Now the point is that there was a time-bound limitation on SIT, and I think the SIT has been doing its duties, fulfilling it absolutely correctly. But Gaurav, again, I would come with the same rider. It is a problem that there's a problem that has happened. Hamari drishti mein ye paap bhi hai. Is wajah se main ye baat bahut zordar tarike se rekhankit kar rahi hun. This fight is a Hindu fight. And I don't think Hindus like us will allow Samajwadi Party or the Congress Party to take a moral high ground. Those who have not even visited Ram Lala once.
0: Okay.
4: Those who have not even donated a single paisa. What locus standi do these politicians have?
1: ये ऐसा ही क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एमपी एमएलए चोरी हो रहे हैं, जनता का विश्वास चोरी हो रहा है, नीट का पर्चा चोरी हो जाता है, प्रभु के दान पार्क में चोरी हो जा रही है,
4: चोरी हो रही,
1: विश्वास चोरी हो रहा है,
4: भाई कहां का नहीं हो रहा है ये बता दो मुझे,
1: क्या नहीं
4: मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है इस कितने लोगों ने अपनी पॉलिटिकल राजनीति को बिल्कुल टिकाऊ तरीके से रखा है मुझे जवाब प्रमाण देने की जरूरत नहीं है
0: ठीक संजू वर्मा क्विकली
4: आपको शर्म आनी चाहिए ये कहने में कि हमारे पॉलिटिशियंस बिक जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने शर्म आनी चाहिए थी आपको
0: संजू वर्मा पॉलिटिक्स संजू वर्मा ओनली संजू वर्मा रिस्पॉन्ड मैम
2: कैन आई प्लीज गौरव वो जो हिंदी में कहावत है ना हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है लेकिन दिल को खुश करने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है इवन द कांग्रेस इकोसिस्टम द समाजवादी पार्टी इकोसिस्टम राहुल गांधी एंड अखिलेश यादव नो डीप विद इन कि इनको भगवान राम लल्ला की आस्था से कोई लेना देना नहीं है दे आर पोलिटिसाइजिंग द चंपत राय एंड अयोध्या राम टेम्पल इशू टू गेन पोलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स अहेड ऑफ उत्तर प्रदेश 2027 असेंबली इलेक्शंस बट आई वॉन्ट टू टेल अनुराग भदौरिया जब वाराणसी में 2012 में ब्लास्ट हुआ था इंडियन मुजाहिदीन
1: बात हो रही है राम मंदिर की वहां पे चोरी की आप इधर उधर मुद्दे को भटकाने में लगे हैं आप 2012 में चले गए मैं तो बात कर रहा हूं अभी जो प्रभु राम के यहां दान पात्र में चोरी उस पे क्यों बोलने से डरते हैं आप उसमें बात क्यों नहीं करना चाह रहे जैसे उस पे बात आती है आप इधर उधर भागने लगते हैं प्रभु राम के ये हमारे आस्था का विषय करोड़ों हिंदुओं के आस्था का विषय सनातनियों की बात है ये आप उस पे चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहे मुझे समझ नहीं आ रहा
0: इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू
5: You're watching India Today Television. India Today Television studio is safe from dengue, protected by All Out.
6: As world soccer hits the big stage, Fanatics Sportsbook is making every game day worth more. Earn up to 10% fan cash on your soccer bets, win or lose. That's real extra value you can unlock every match, all tournament long. And fan cash isn't just for betting. You can use it anywhere in the world of Fanatics. On game tickets, merchandise, collectibles, profit boosts, and more. One ecosystem, endless ways to spend. Plus, new customers get up to $1,000 in fan cash. That's $100 bet match every day for your first 10 days. The world is ready. Are you? Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Must be 21 plus. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. CT, call 888-789-7777. MA, call 800-327-5050. NY, call 877-8-HOPE-NY. MD, visit mdgamblinghelp.org. Not available in all states. Terms apply. See Fanatics Sportsbook app.
7: Honest Herbal Heritage.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं ये विश्व हिंदू परिषद ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद VHP पत्नी पूनम देवी पुत्र रवि यादव ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुईं रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मनीष यादव जो उनका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: आप बहन है उनकी उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में आपका क्या पक्ष है आप क्या कहना चाहेंगे
3: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है नेहा मेरी कुछ नहीं है उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है उनका मैटर चाचा चाची का है वो अलग जाने
2: हाँ नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया तमाम चीजें उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं
3: वो सब फंसाया जा रहा है उनका केस चल रहा है उसी में वो भी आपके बीच में बोल रही है कि फंस रहे ये लोग
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev who was in charge of the temple CCTV and counting room. Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein. जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है उसकी डकैती आपके सामने है और हम नहीं कह रहे शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई जो महिपाल सिंह था जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है दान का पैसा चुराया जा रहा है एक्शन नहीं लिया गया महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए
0: ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट इज वाउड टू इंश्योर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड
6: निष्पक्ष जांच होगी FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो ये सरकार इसने निर्देश दिया
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bipoles with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report.
8: Tamil Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIA-DMK government. Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TVK in upcoming by-polls and local body polls.
9: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிவிட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
8: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
9: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
8: As attention shifts to the upcoming by-polls, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress,

0: News coming in from Karachi, at least four people are dead, three others are injured after a suicide attack in Pakistan's Karachi. Explosion was heard, intense gunfire that is underway. This has been reported from Gulistane Johar in Karachi. According to initial reports, a suicide bomber who detonated explosives near a Rangers compound in Karachi. Sources state that the first explosion was very powerful, followed by two smaller blasts. Gunfire has reportedly continued for nearly half an hour. Reports of a bomb blast followed by gunfire in Karachi in Pakistan. An explosion also occurred in the Safura area of Karachi, followed by continuous gunfire. The attackers triggered an explosion first. It is reported that multiple attackers were present. Continuous exchange of fire is underway on both sides. Those are the latest pictures coming in. Let me take this to my colleague Arvind Ojha to get further details of what is happening at the moment. Arvind, the char logo ki maut ho gayi hai, teen ghayal hai. Abhi kya situation hai? Gunfire abhi bhi underway hai. Kya ye death toll aage badh sakta hai?
1: देखिए, अभी जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक चार लोगों की मौत हुई है जबकि तीन लोग घायल हैं. अभी ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जो चार डेथ हुई है क्या उसमें रेंजर्स के भी ऑफिसर्स हैं, क्योंकि ये जो अटैक है, ये जो पाकिस्तान रेंजर्स का हेडक्वार्टर है कराची में, वहां पर अटैक हुआ है और 9 से ज्यादा जो अटैकर्स हैं उनके होने की जानकारी वो सामने आई है. पहले सुसाइड बॉम्बर ने जो रेंजर्स का हेडक्वार्टर है उसके गेट पर विस्फोट से खुद को उड़ा लिया. उसके बाद मल्टीपल जो बॉम्ब ब्लास्ट वो सुनाई दिया, जिसके बाद जो अटैकर्स है वो नीचे उतरते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं. रेंजर्स की तरफ से गोलीबारी जारी है. अभी भी तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है. दोनों ही तरफ से गोलियां चल रही हैं. चार लोगों की इसमें मौत हुई है, तीन इंजर्ड हुए हैं, लेकिन जो लोकल सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि और जो कैजुअल्टी है उसकी संभावना हो सकती है.
0: फिलहाल और क्या जानकारी है अरविंद? सोशल मीडिया पे कई तरह के वीडियोस भी आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत प्राइम इलाका है, और क्या बता सकते हैं आप?
1: बिल्कुल, और देखिए जो लोकल्स हमारे सोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी हमारे पास जो इंडिया टुडे के पास विजुअल्स आए हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो रेंजर्स हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के उस साइड जा रहे हैं जहां पर जो अटैकर्स हैं वो छुपे हुए हैं. तो लगातार उनको क्रैकडाउन करने की कोशिश रेंजर्स की तरफ से की जा रही है. अगर इस इलाके की बात की जाए तो ये हैवली गार्डेड इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि रेंजर्स का हेडक्वार्टर है यहाँ पर. इस वजह से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा टाइट रहती है. लेकिन ये एक वेल प्लान अटैक है और इस वेल प्लान अटैक के तहत सबसे पहले सुसाइड बॉम्बर वो गेट से अपनी गाड़ी को टकराता है जिसके बाद धमाका होता है. ऐसे में जो वहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल थे वो इधर उधर भागने लगते हैं और इसी दौरान जो अटैकर्स है वो अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं, पोजिशन लेते हैं, जिस वजह से जो रेंजर्स है उनके साथ जो ये मुकाबला है, जो ये फाइटिंग है, वो लंबी चल रही है.
0: जी अरविंद, शुक्रिया इस जानकारी के लिए. Another alleged paper leak just hours before over 6 lakh candidates were to appear for Maharashtra's TET. Police busted an alleged paper leak racket. An SIT is now probing the leak. Arrests are being made, but the alleged mastermind is still on the run. And now the opposition is targeting the government over yet another examination controversy. Take a look at this report.
2: Another exam, another alleged paper leak, another crushing blow to the dreams of lakhs of aspirants. The Maharashtra teacher eligibility test has been postponed after police foiled an alleged paper leak operation just hours before the exam. More than 6.12 lakh candidates were set to appear across 1,728 centres. Instead of taking the test, they were left stranded as the examination was called off. Police say three accused were arrested from Kongaon while allegedly attempting to sell the TET question paper. Four sets of question papers along with debit and credit cards all seized. The accused, Rajiv Shah and Akash Kumar from Bihar and Dheeraj Kumar from Haryana, had allegedly travelled from Delhi. Investigators claim the paper was being sold for Rs. 1.5 crore. The alleged masterminds remain absconding, with police suspecting the involvement of an organized paper leak racket.
3: DCP Zone 2 Pawan Bansod and Tenchi team yanni ek trap lavla te trap cha anushangane sakali satranta akarya darmyan te anushangane te trap lavla te tini lokanna tabyat ghetlo tyancha angadharti madhe tyanchyakade ekun udya je paper honar ahet teche 4 set he paper milale tyas barobar itar vastu mobile debit card credit card vagare he milale.
2: The alleged leak has now snowballed into a full-blown political flashpoint. Lok Sabha leader of opposition launched a scathing attack, saying another examination had fallen victim to yet another paper leak. Calling it a reflection of a broken examination system, he alleged that the education system had become an extortion racket and described the leak as nothing less than the theft of India's youth's future. Adding to the tirade, Shiv Sena UBT leader Aditya Thackeray said Maharashtra has now witnessed leaks in NEET, MPSC and TET, accusing the BJP of failing the state's youth.
4: NEET cha paper phutla Dharmendra Pradhan ni rajinama tar dilach paije pan tyatle je kai kendra bindu hota te aplya durdevane aplya maharashtratlo hota ani asa mhantat ki te pakadlele kiwa jyanchyo te arop ahet te sagle yancha parivarashi sambandhit hote ma ya papa baddal konalach kai vatat nahi किंवा तुम्हाला त्याच्याकडे लक्ष जाऊ नये म्हणून हे फोडाफोडी चाललंय असा माझा स्पष्ट आरोप आहे.
2: Additionally, Cockroach Janata Party founder Abhijit Dibke joined in to slam those running the education system of the country.
5: या सरकारला तुमच्यावर काही फरक पडत नाही असं नाही की परीक्षा नीट घेऊ शकत नाही, घेऊ शकतात ते, पण यांचा तो फोकस नाही, यांना त्याला प्रायोरिटी द्यायची नाही. यांना प्रायोरिटी द्यायचे फक्त हे सत्ता कशी आपल्या जवळ घेऊ शकता, हे कसे दुसरे पक्ष फोडू शकतात आणि कशी फक्त त्यांची सत्ता बनवून ठेवू शकतात यांना तुमच्या आयुष्यावर काही घेणं नाही.
2: Meanwhile, Deputy Chief Minister Eknath Shinde promised zero tolerance, vowing the strictest of actions against everyone involved. He said the government is considering invoking the MCOCA against the alleged masterminds and ensured candidates the exam would be reconducted at the earliest in a fair and transparent manner.
6: Ab samay aa gaya hai ki coaching sansthanon ki taraf se jo zyada se zyada bachchon ko unke yahan coaching lene wale bachchon ko पास करने की जो एक धुन लगी है और जिसकी वजह से वो पेपर लीक करने का एक पाप कर रहे हैं, ऐसे तमाम संस्थानों के कामकाज के ऊपर ध्यान दिया जाए और पेपर लीक करने वाले पूरे माफिया तंत्र को खत्म करने की अगर आवश्यकता पड़े तो सख्त कानून बनाया जाए.
2: For lacks of aspirants, another exam has been postponed. For the government, another alleged paper leak has become another political test. And until the alleged masterminds are caught, one question refuses to go away. Who is safeguarding the credibility of India's examination system? Bureau Report, India Today.
0: The investigation has exposed serious security lapses inside the temple. The SIT has described these as willful negligence and is also probing possible insider involvement. Police has claimed to have recovered nearly 80 lakh rupees from them so far. Amid the growing controversy, Ram Mandir Trust Chief Champat Rai has stepped down from his post. He has not been named as an accused in the FIR, but the opposition is leaving no stone unturned to corner the Yogi government over the loot. Take a look at this report.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All 8 arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं ये विश्व हिंदू परिषद ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद VHP पत्नी पूनम देवी पुत्र रवि यादव ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुईं रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मनीष यादव जो उसका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: उनकी बहन है वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है
3: आप बहन है उनकी उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में आपका क्या पक्ष है आप क्या कहना चाहेंगे
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है नेहा मेरी कुछ नहीं है उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है उनका मैटर चाचा चाची का है वो अलग जाने
3: हाँ नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया तमाम चीजें उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं
2: वो सब फंसाया जा रहा है उनका केस चल रहा है उसी में वो भी आके बीच में बोल रही है कि फंस रहे ये लोग
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev who was in charge of the temple CCTV and counting room Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC-monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein. जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है उसकी डकैती आपके सामने है और हम नहीं कह रहे शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई जो महिपाल सिंह था जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है दान का पैसा चुराया जा रहा है एक्शन नहीं लिया गया महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए
0: ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट इज वाउड टू इंश्योर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड
6: निष्पक्ष जांच होगी FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो ये सरकार इसने निर्देश दिया
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call off the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
8: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
9: कितना एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
8: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
9: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का
0: पुलिस हाउएवर से द हेयर पैच अलोन मे नॉट हैव बीन द मोटिव फॉर द मर्डर. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं ये विश्व हिंदू परिषद ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद VHP पत्नी पूनम देवी पुत्र रवि यादव ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुई रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मनीष यादव जो उसका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है
0: Another key accused Anukalp Mishra who has been arrested in the case had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago
2: उनकी बहन है वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है
3: आप बहन है उनकी उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में आपका क्या पक्ष है आप क्या कहना चाहेंगे
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है नेहा मेरी कुछ नहीं है उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है उनका मैटर चाचा चाची का है वो अलग जाने
3: हाँ नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया तमाम चीजें उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं
2: वो सब फंसाया जा रहा है उनका केस चल रहा है उसी में वो भी आपके बीच में बोल रही है कि फंस गए ये लोग
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev who was in charge of the temple's CCTV and counting room. Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC-monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein, jo seedha RSS aur PMO dekhta hai, उसकी डकैती आपके सामने है और हम नहीं कह रहे शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई जो महिपाल सिंह था जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है दान का पैसा चुराया जा रहा है एक्शन नहीं लिया गया महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए
0: ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट इज वाउ टू इंश्योर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड
6: निष्पक्ष जांच होगी FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो ये सरकार इसने निर्देश दिया
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Sonia Gandhi has launched a big attack on Modi government's foreign policy vis-a-vis the Israel conflict in a scathing op-ed piece for a national daily. The Congress MP questioned the government's silence on Gaza and claimed that India is prioritizing closer ties with Israel over its historical position on Palestinian rights. Sonia Gandhi further sought to paint the government as pro-Israel and argued that India was slipping into Tel Aviv's orbit. Meanwhile, BJP has rebutted Sonia Gandhi and accused the former Congress chief of playing vote bank politics over Gaza. The Israel conflict has remained a polarizing issue in Indian politics and the Congress has time and again raised its voice for the Palestinian cause.
4: ये सवाल आज से नहीं उठाए जा रहे हैं, सोनिया जी ने पहले भी उठाए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल उठाए, हमला बोला प्रधानमंत्री पर कि आप कैसे एक गैर कानूनी युद्ध में जाकर इसराइल के साथ खड़े हो गए। यूएन रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं थी, सबने सब कुछ देखा है, पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है इसराइल के खिलाफ लामबंद होकर, इस गैर कानूनी जंग के खिलाफ। लेकिन भारत, भारत का प्रधानमंत्री किसी दबाव में है, भारत का प्रधानमंत्री कहीं ब्लैकमेल हो रहा है कि इस तरह से खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है, इस तरह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। गजा में हजारों हजारों बच्चे मारे गए, उसके बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अफसोस कि भारत को इस तरह का प्रधानमंत्री देखना पड़ा।
8: अमेरिका के अंदर इसराइल का झंडा नहीं लहराने दिया लोगों ने, यह है गाजा, वहां फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। फिलिस्तीन के अंदर पूरी दुनिया ने देखा है कि नरसंहार हुआ है, मासूम बच्चों को मारा गया है, देश का कूटनीति और देश की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी हमारे सरकार ने।
9: द प्रॉब्लम इज दैट कांग्रेस ऑलवेज पुट्स वोट बैंक ऑन विदेश नीति एंड देयरफॉर दे इन द नेम ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स नेवर डेवलप्ड एनी रिलेशंस विद इजराइल एंड दे आर द सेम वंस हु कीप स्पीकिंग अप एंड इवन यूलोजाइजिंग प्लेटफॉर्मिंग एंड सिंपथाइजिंग विद द कॉज ऑफ हमास बट नॉट वंस हैव दे स्पोकन कैटेगोरिकली ऑन द टेरर अटैक्स that have been done on Israel. Sonia Gandhi speaks up for the Muslims in Gaza. They tweet about Rafah, but they are silent on Hindus in Dhaka. And this shows that for them, even Videsh Niti is calculated on the table, on the calculus of vote bank.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bipoles, with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report.
10: Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIADMK government. Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TVK in upcoming bipoles and local body polls.
11: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி விட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
10: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
12: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
10: As attention shifts to the upcoming bipoles, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress, VCK and IUML are now deeply embedded inside the ruling TVK government with cabinet portfolios, while the left continues its outside support to the minority government. The bipoles could offer the first glimpse of Tamil Nadu's changing electoral landscape. Bureau Report, India Today.
7: Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call up the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
13: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
14: कितना एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
13: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
14: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का बड़ा पसंद था चल कर देते थे ना
0: पुलिस हाउएवर से द हेयर पैच अलोन मे नॉट हैव बीन द मोटिव फॉर द मर्डर. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
15: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिए
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट अ सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
16: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
17: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
18: आपने ये कहा मुख्यमंत्री
17: से जी मैंने ये उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है
18: एसआईटी की मांग की आपने इस पर
17: सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज आल्सो अपॉइंटेड 2611 प्रोसिक्यूटर्स उज्ज्वल निकम as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains. Will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: The US envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and PM Modi and given a big update about the India-US trade deal. At the same time, US Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-US ties? We are getting you this special report.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं ये विश्व हिंदू परिषद ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद VHP पत्नी पूनम देवी पुत्र रवि यादव ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुई रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मनीष यादव जो उसका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: उनकी बहन है वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है
3: आप बहन है उनकी उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में आपका क्या पक्ष है आप क्या कहना चाहेंगे
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है नेहा मेरी कुछ नहीं है उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है उनका मैटर चाचा चाची का है वो अलग जाने
3: हाँ नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया तमाम चीजें उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं
2: वो सब फंसाया जा रहा है उनका केस चल रहा है उसी में वो भी आके बीच में बोल रही है कि फंस गए ये लोग
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev, who was in charge of the temple's CCTV and counting room. Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: एक मंदिर पूरे देश में जो सीधा RSS और PMO देखता है उसकी डकैती आपके सामने है और हम नहीं कह रहे शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई जो महिपाल सिंह था जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है दान का पैसा चुराया जा रहा है एक्शन नहीं लिया गया महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए
0: ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट इज वाउ टू इंश्योर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड
6: निष्पक्ष जांच होगी FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो ये सरकार इसने निर्देश दिया
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bipoles with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report.
8: Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIA-DMK government. Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TVK in upcoming bi-polls and local body polls.
9: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிவிட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
8: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
9: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
8: As attention shifts to the upcoming bi-polls, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress, VCK and IUML are now deeply embedded inside the ruling TVK government with cabinet portfolios, while the left continues its outside support to the minority government. The bi-polls could offer the first glimpse of Tamil Nadu's changing electoral landscape. Bureau Report, India Today.
7: Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call off the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
10: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
11: कितना छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
10: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
11: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का बिल्कुल बड़ा बच्चा चल कर देते थे ना.
0: Police, however, say the hair patch alone may not have been the motive for the murder. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
12: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिए
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट हिज सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
13: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
14: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
15: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से
14: जी मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑल्सो अपॉइंटेड 2611 प्रोसिक्यूटर्स उज्ज्वल निकम as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains. Will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: The US envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and PM Modi and given a big update about the India-US trade deal. At the same time, US Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-US ties? We are getting you this special report.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं. ये विश्व हिंदू परिषद, ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव, विश्व हिंदू परिषद VHP, पत्नी पूनम देवी, पुत्र रवि यादव. ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुई, रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मनीष यादव जो उनका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया. कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है.
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: उनकी बहन है, वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है.
3: आप बहन है उनकी, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है. ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में. आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है. नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, उनका केस चल रहा है, उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने.
3: हाँ, नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया, तमाम चीजें, उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं?
2: वो सब फंसाया जा रहा है, उनका केस चल रहा है, उसी में वो भी आके बीच में बोल रही है कि फंस जाए ये लोग.
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer, Arjun Dev, who was in charge of the temple's CCTV and counting room. Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein jo seedha RSS aur PMO dekhta hai, uski dakaiti aapke samne hai. Aur hum nahi keh rahe, shuruaat to mandir ke bhitar se hui. Jo Mahipal Singh tha, jisne sabse pehle Champat Rai ji ko bataya ki saab ye counting se ye paisa gayab ho raha hai, daan ka paisa churaya ja raha hai. Action nahi liya gaya, Mahipal Singh ko bahar kar diya gaya. तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा, इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे.
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला. तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए.
0: On the other hand, Yogi government has vowed to ensure stringent action against the accused.
6: निष्पक्ष जांच होगी, FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया.
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Sonia Gandhi has launched a big attack on Modi government's foreign policy vis-a-vis the Israel conflict in a scathing op-ed piece for a national daily. The Congress MP questioned the government's silence on Gaza and claimed that India is prioritizing closer ties with Israel over its historical position on Palestinian rights. Sonia Gandhi further sought to paint the government as pro-Israel and argued that India was slipping into Tel Aviv's orbit. Meanwhile, BJP has rebutted Sonia Gandhi and accused the former Congress chief of playing vote bank politics over Gaza. The Israel conflict has remained a polarizing issue in Indian politics, and the Congress has time and again raised its voice for the Palestinian cause.
4: ये सवाल आज से नहीं उठाए जा रहे हैं। सोनिया जी ने पहले भी उठाए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल उठाए, हमला बोला प्रधानमंत्री पर कि आप कैसे एक गैर कानूनी युद्ध में जाकर इसराइल के साथ खड़े हो गए। यूएन रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं थी, सबने सब कुछ देखा है, पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है इसराइल के खिलाफ लामबंद होकर, इस गैर कानूनी जंग के खिलाफ। लेकिन भारत, भारत का प्रधानमंत्री किसी दबाव में है, भारत का प्रधानमंत्री कहीं ब्लैकमेल हो रहा है कि इस तरह से खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है, इस तरह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। गजा में हजारों हजारों बच्चे मारे गए, उसके बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अफसोस कि भारत को इस तरह का प्रधानमंत्री देखना पड़ा।
8: अमेरिका के अंदर इसराइल का झंडा नहीं लहराने दिया लोगों ने, यह है गाजा, वहां फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। फिलिस्तीन के अंदर पूरी दुनिया ने देखा है कि नरसंहार हुआ है, मासूम बच्चों को मारा गया है, देश का कूटनीति और देश की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी हमारे सरकार ने।
9: द प्रॉब्लम इज दैट कांग्रेस ऑलवेज पुट्स वोट बैंक ऑन विदेश नीति एंड देयरफॉर दे इन द नेम ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स नेवर डेवलप्ड एनी रिलेशंस विद इजराइल एंड दे आर द सेम वंस हु कीप स्पीकिंग अप एंड इवन यूलोजाइजिंग प्लेटफॉर्मिंग एंड सिंपथाइजिंग विद द कॉज ऑफ हमास बट नॉट वंस हैव दे स्पोकन कैटेगोरिकली ऑन द टेरर अटैक्स that have been done on Israel. Sonia Gandhi speaks up for the Muslims in Gaza. They tweet about Rafah, but they are silent on Hindus in Dhaka. And this shows that for them, even Videsh Niti is calculated on the table, on the calculus of vote bank.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bipoles, with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report.
10: Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIA-DMK government. Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TVK in upcoming bipoles and local body polls.
11: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிவிட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
10: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
12: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
10: As attention shifts to the upcoming bipoles, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress, VCK and IUML are now deeply embedded inside the ruling TVK government with cabinet portfolios, while the left continues its outside support to the minority government. The bipoles could offer the first glimpse of Tamil Nadu's changing electoral landscape. Bureau Report, India Today.
7: Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call off the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
13: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
14: केतन एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
13: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
14: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का बड़ा पसंद था चल कर देते
0: थे ना पुलिस हाउएवर से द हेयर पैच अलोन मे नॉट हैव बीन द मोटिव फॉर द मर्डर. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
15: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिए
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट अ सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
16: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
17: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
18: आपने ये कहा मुख्यमंत्री
17: जी मैंने ये उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है
18: एसआईटी की मांग की है
17: सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज आल्सो अपॉइंटेड 2611 प्रोसिक्यूटर्स उज्ज्वल निकम as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains. Will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: The US envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and PM Modi and given a big update about the India-US trade deal. At the same time, US Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-US ties? We are getting you this special report.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All 8 arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं ये विश्व हिंदू परिषद ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद VHP पत्नी पूनम देवी पुत्र रवि यादव ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुई रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मनीष यादव जो उनका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: उनकी बहन है वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है
3: आप बहन है उनकी उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में आपका क्या पक्ष है आप क्या कहना चाहेंगे
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है नेहा मेरी कुछ नहीं है उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है उनका मैटर चाचा चाची का है वो अलग जाने
3: हाँ नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया तमाम चीजें उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं
2: वो सब फंसाया जा रहा है उनका केस चल रहा है उसी में वो भी आके बीच में बोल रही है कि फंस जाए ये लोग
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev who was in charge of the temple CCTV and counting room. Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है उसकी डकैती आपके सामने है और हम नहीं कह रहे शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई जो महिपाल सिंह था जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है दान का पैसा चुराया जा रहा है एक्शन नहीं लिया गया महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए
0: ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट इज वाउ टू इंश्योर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड
6: निष्पक्ष जांच होगी FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो ये सरकार इसने निर्देश दिया
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bipoles with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report.
8: Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIA-DMK government.
9: ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாலும் எங்களை போட்டு பிராண்டதுக்கு பல பேர் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல, எங்க மேல பழி போடுறதுக்கு, அதனால பேசாம இருந்தோம். மற்ற கட்சிகள் என்ன வேணா பேசட்டும், ஏதாவது விமர்சிக்கிறீங்களா, அவங்க என்ன நிலைப்பாடு எடுத்தாலும் எம்டிஎம்கேனா உங்களுக்கு கிள்ளுக்கு.
8: Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TDK in upcoming bi-polls and local body polls.
9: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிவிட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
8: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
9: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
8: As attention shifts to the upcoming bi-polls, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress, VCK and IUML are now deeply embedded inside the ruling TVK government with cabinet portfolios, while the left continues its outside support to the minority government. The bi-polls could offer the first glimpse of Tamil Nadu's changing electoral landscape. Bureau Report, India Today.
7: Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call off the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
10: कोई वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
11: कितना एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
10: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
11: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का बिल्कुल बड़ा बच्चा चल कर देते थे ना.
0: Police, however, say the hair patch alone may not have been the motive for the murder. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
12: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिए
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट अ सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
13: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
14: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
15: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से
14: जी मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है
15: एसआईटी की मांग की आपने इस पर
14: सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज आल्सो अपॉइंटेड 2611 प्रोसिक्यूटर्स उज्ज्वल निकम as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains. Will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: The US envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and PM Modi and given a big update about the India-US trade deal. At the same time, US Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-US ties? We are getting you this special report.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं. ये विश्व हिंदू परिषद, ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव, विश्व हिंदू परिषद VHP, पत्नी पूनम देवी, पुत्र रवि यादव. ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुई, रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मनीष यादव जो उनका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया. कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है.
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: उनकी बहन है, वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है.
3: आप बहन है उनकी, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है. ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में. आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है. नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से, उनका केस चल रहा है. उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने.
3: हाँ, नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया, तमाम चीजें, उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं?
2: वो सब फंसाया जा रहा है, उनका केस चल रहा है, उसी में वो भी आपके बीच में बोल रही है कि फंस रहे ये लोग.
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer, Arjun Dev, who was in charge of the temple CCTV and counting room. Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने है. और हम नहीं कह रहे, शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई. जो महिपाल सिंह था, जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है, दान का पैसा चुराया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया गया, महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया. तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा, इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे.
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला. तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए.
0: On the other hand, Yogi government has vowed to ensure stringent action against the accused.
6: निष्पक्ष जांच होगी, FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया.
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bipoles, with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report.
8: Tamil Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIADMK government. Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TVK in upcoming by-polls and local body polls.
9: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிவிட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
8: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
9: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
8: As attention shifts to the upcoming by-polls, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress, VCK and IUML are now deeply embedded inside the ruling TVK government with cabinet portfolios, while the left continues its outside support to the minority government. The by-polls could offer the first glimpse of Tamil Nadu's changing electoral landscape. Bureau Report, India Today.
7: Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call off the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
10: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
11: कितना छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
10: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
11: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का बिल्कुल बड़ा पसंद था चल कर देते थे ना.
0: Police, however, say that the hair patch alone may not have been the motive for the murder. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
12: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिया
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट अ सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
13: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
14: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
15: आपने ये कहा मुख्यमंत्री
14: जी मैंने ये उनसे विनती की कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है
15: एसआईटी की मांग की आपने इस पर
14: सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज आल्सो अपॉइंटेड 2611 प्रोसिक्यूटर्स उज्ज्वल निकम as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains. Will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: The U.S. envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and PM Modi and given a big update about the India-U.S. trade deal. At the same time, U.S. Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-U.S. ties? We are getting you this special report.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं ये विश्व हिंदू परिषद ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद VHP पत्नी पूनम देवी पुत्र रवि यादव ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुईं रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मनीष यादव जो इसका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: आप बहन है उनकी उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में आपका क्या पक्ष है आप क्या कहना चाहेंगे
3: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है नेहा मेरी कुछ नहीं है उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है उनका मैटर चाचा चाची का है वो अलग जाने
2: हाँ नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया तमाम चीजें उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं
3: वो सब फंसाया जा रहा है उनका केस चल रहा है उसी में वो भी आपके बीच में बोल रही है कि फंस रहे ये लोग
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev who was in charge of the temple CCTV and counting room. Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC-monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein. जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है उसकी डकैती आपके सामने है और हम नहीं कह रहे शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई जो महिपाल सिंह था जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है दान का पैसा चुराया जा रहा है एक्शन नहीं लिया गया महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए
0: ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट इज वाउड टू इंश्योर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड
6: निष्पक्ष जांच होगी FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो ये सरकार इसने निर्देश दिया
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Sonia Gandhi has launched a big attack on Modi government's foreign policy vis-a-vis the Israel conflict in a scathing op-ed piece for a national daily. The Congress MP questioned the government's silence on Gaza and claimed that India is prioritizing closer ties with Israel over its historical position on Palestinian rights. Sonia Gandhi further sought to paint the government as pro-Israel and argued that India was slipping into Tel Aviv's orbit. Meanwhile, BJP has rebutted Sonia Gandhi and accused the former Congress chief of playing vote bank politics over Gaza. The Israel conflict has remained a polarizing issue in Indian politics and the Congress has time and again raised its voice for the Palestinian cause.
4: ये सवाल आज से नहीं उठाए जा रहे हैं, सोनिया जी ने पहले भी उठाए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल उठाए, हमला बोला प्रधानमंत्री पर कि आप कैसे एक गैर कानूनी युद्ध में जाकर इसराइल के साथ खड़े हो गए। यूएन रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं थी, सबने सब कुछ देखा है, पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है इसराइल के खिलाफ लामबंद होकर, इस गैर कानूनी जंग के खिलाफ। लेकिन भारत, भारत का प्रधानमंत्री किसी दबाव में है, भारत का प्रधानमंत्री कहीं ब्लैकमेल हो रहा है कि इस तरह से खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है, इस तरह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। गजा मेल हजारों हजारों बच्चे मारे गए, उसके बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अफसोस कि भारत को इस तरह का प्रधानमंत्री देखना पड़ा।
8: अमेरिका के अंदर इसराइल का झंडा नहीं लहराने दिया लोगों ने, यह है गाजा, वहां फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। फिलिस्तीन के अंदर पूरी दुनिया ने देखा है कि नरसंहार हुआ है, मासूम बच्चों को मारा गया है, देश का कूटनीति और देश की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी हमारे सरकार ने।
9: द प्रॉब्लम इज दैट कांग्रेस ऑलवेज पुट्स वोट बैंक ऑन विदेश नीति एंड देयरफॉर दे इन द नेम ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स नेवर डेवलप्ड एनी रिलेशंस विद इजराइल एंड दे आर द सेम वंस हु कीप स्पीकिंग अप एंड इवन यूलोजाइजिंग प्लेटफॉर्मिंग एंड सिंपथाइजिंग विद द कॉज ऑफ हमास बट नॉट वंस हैव दे स्पोकन कैटेगोरिकली ऑन द टेरर अटैक्स that have been done on Israel. Sonia Gandhi speaks up for the Muslims in Gaza. They tweet about Rafah, but they are silent on Hindus in Dhaka. And this shows that for them, even Videsh Niti is calculated on the table, on the calculus of vote bank.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bipoles, with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report. Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIA-DMK government. Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TVK in upcoming bipoles and local body polls.
10: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி விட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
7: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
11: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
7: As attention shifts to the upcoming bipoles, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress, VCK and IUML are now deeply embedded inside the ruling TVK government with cabinet portfolios, while the left continues its outside support to the minority government. The bipoles could offer the first glimpse of Tamil Nadu's changing electoral landscape. Bureau Report, India Today. Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call off the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
12: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
13: केतन एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
12: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
13: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का बिल्कुल बड़ा पसंद था चल कर देते थे ना
0: पुलिस हाउएवर से द हेयर पैच अलोन मे नॉट हैव बीन द मोटिव फॉर द मर्डर. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
14: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिया
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट अ सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
15: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
16: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
17: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से
16: जी मैंने ये उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज ऑल्सो अपॉइंटेड 2611 प्रोसिक्यूटर्स उज्ज्वल निकम as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains. Will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: The US envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and PM Modi and given a big update about the India-US trade deal. At the same time, US Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-US ties? We are getting you this special report.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All 8 arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं ये विश्व हिंदू परिषद ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद VHP पत्नी पूनम देवी पुत्र रवि यादव ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुई रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मनीष यादव जो उसका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है
0: Another key accused Anukalp Mishra who has been arrested in the case had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago
2: उनकी बहन है वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है
3: आप बहन है उनकी उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में आपका क्या पक्ष है आप क्या कहना चाहेंगे
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है नेहा मेरी कुछ नहीं है उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है उनका मैटर चाचा चाची का है वो अलग जाने
3: हाँ नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया तमाम चीजें उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं
2: वो सब फंसाया जा रहा है उनका केस चल रहा है उसी में वो भी आपके बीच में बोल रही है कि फंस गए ये लोग
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev who was in charge of the temple CCTV and counting room Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein. जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है उसकी डकैती आपके सामने है और हम नहीं कह रहे शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई जो महिपाल सिंह था जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है दान का पैसा चुराया जा रहा है एक्शन नहीं लिया गया महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए
0: ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट इज वाउड टू इंश्योर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड
6: निष्पक्ष जांच होगी FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो ये सरकार इसने निर्देश दिया
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Sonia Gandhi has launched a big attack on Modi government's foreign policy vis-a-vis the Israel conflict in a scathing op-ed piece for a national daily. The Congress MP questioned the government's silence on Gaza and claimed that India is prioritizing closer ties with Israel over its historical position on Palestinian rights. Sonia Gandhi further sought to paint the government as pro-Israel and argued that India was slipping into Tel Aviv's orbit. Meanwhile, BJP has rebutted Sonia Gandhi and accused the former Congress chief of playing vote bank politics over Gaza. The Israel conflict has remained a polarizing issue in Indian politics and the Congress has time and again raised its voice for the Palestinian cause.
4: ये सवाल आज से नहीं उठाए जा रहे हैं, सोनिया जी ने पहले भी उठाए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल उठाए, हमला बोला प्रधानमंत्री पर कि आप कैसे एक गैर कानूनी युद्ध में जाकर इसराइल के साथ खड़े हो गए। यूएन रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं थी, सबने सब कुछ देखा है, पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है इसराइल के खिलाफ लामबंद होकर, इस गैर कानूनी जंग के खिलाफ। लेकिन भारत, भारत का प्रधानमंत्री किसी दबाव में है, भारत का प्रधानमंत्री कहीं ब्लैकमेल हो रहा है कि इस तरह से खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है, इस तरह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, गजा मेल हजारों हजारों बच्चे मारे गए, उसके बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अफसोस कि भारत को इस तरह का प्रधानमंत्री देखना पड़ा।
8: अमेरिका के अंदर इसराइल का झंडा नहीं लहराने दिया लोगों ने, यह है गाजा, वहां फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। फिलिस्तीन के अंदर पूरी दुनिया ने देखा है कि नरसंहार हुआ है, मासूम बच्चों को मारा गया है, देश का कूटनीति और देश की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी हमारे सरकार ने।
9: द प्रॉब्लम इज दैट कांग्रेस ऑलवेज पुट्स वोट बैंक ऑन विदेश नीति एंड देयरफॉर दे इन द नेम ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स नेवर डेवलप्ड एनी रिलेशंस विद इजराइल एंड दे आर द सेम वंस हु कीप स्पीकिंग अप एंड इवन यूलोजाइजिंग प्लेटफॉर्मिंग एंड सिंपथाइजिंग विद द कॉज ऑफ हमास बट नॉट वंस हैव दे स्पोकन कैटेगोरिकली ऑन द टेरर अटैक्स that have been done on Israel. Sonia Gandhi speaks up for the Muslims in Gaza. They tweet about Rafah, but they are silent on Hindus in Dhaka. And this shows that for them, even Videsh Niti is calculated on the table, on the calculus of vote bank.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bipoles, with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report. Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIADMK government. Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TVK in upcoming bipoles and local body polls.
10: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி விட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
7: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
11: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
7: As attention shifts to the upcoming bipoles, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress, VCK and IUML are now deeply embedded inside the ruling TVK government with cabinet portfolios, while the left continues its outside support to the minority government. The bipoles could offer the first glimpse of Tamil Nadu's changing electoral landscape. Bureau Report, India Today. Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call off the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
12: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
13: केतन एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
12: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
13: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का
0: पुलिस हाउएवर से द हेयर पैच अलोन मे नॉट हैव बीन द मोटिव फॉर द मर्डर. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
14: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिया
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट अ सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
15: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
16: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
17: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से
16: जी मैंने ये उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है
17: एसआईटी की मांग की आपने इस पर
16: सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: The Maharashtra government has also appointed 2611 prosecutors Ujjwal Nikam as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains. Will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: The US envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and PM Modi and given a big update about the India-US trade deal. At the same time, US Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-US ties? We are getting you this special report.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं. ये विश्व हिंदू परिषद, ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव, विश्व हिंदू परिषद VHP, पत्नी पूनम देवी, पुत्र रवि यादव. ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुई, रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मनीष यादव जो उनका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया. कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है.
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: उनकी बहन है, वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है.
3: आप बहन है उनकी, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है. ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में. आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है. नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है. उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने.
3: हाँ, नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया, तमाम चीजें, उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं?
2: वो सब फंसाया जा रहा है, उनका केस चल रहा है, उसी में वो भी आपके बीच में बोल रही है कि फंस गए ये लोग.
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer, Arjun Dev, who was in charge of the temple CCTV and counting room. Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने है. और हम नहीं कह रहे, शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई. जो महिपाल सिंह था, जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है, दान का पैसा चुराया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया गया, महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया. तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा, इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे.
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला. तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए.
0: On the other hand, Yogi government has vowed to ensure stringent action against the accused.
6: निष्पक्ष जांच होगी, FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया.
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Sonia Gandhi has launched a big attack on Modi government's foreign policy vis-a-vis the Israel conflict in a scathing op-ed piece for a national daily. The Congress MP questioned the government's silence on Gaza and claimed that India is prioritizing closer ties with Israel over its historical position on Palestinian rights. Sonia Gandhi further sought to paint the government as pro-Israel and argued that India was slipping into Tel Aviv's orbit. Meanwhile, BJP has rebutted Sonia Gandhi and accused the former Congress chief of playing vote bank politics over Gaza. The Israel conflict has remained a polarizing issue in Indian politics, and the Congress has time and again raised its voice for the Palestinian cause.
4: ये सवाल आज से नहीं उठाए जा रहे हैं, सोनिया जी ने पहले भी उठाए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल उठाए, हमला बोला प्रधानमंत्री पर कि आप कैसे एक गैर कानूनी युद्ध में जाकर इसराइल के साथ खड़े हो गए। यूएन रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं थी, सबने सब कुछ देखा है, पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है इसराइल के खिलाफ लामबंद होकर इस गैर कानूनी जंग के खिलाफ, लेकिन भारत, भारत का प्रधानमंत्री किसी दबाव में है, भारत का प्रधानमंत्री कहीं ब्लैकमेल हो रहा है कि इस तरह से खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है, इस तरह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, गजा मेल हजारों हजारों बच्चे मारे गए, उसके बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, अफसोस कि भारत को इस तरह का प्रधानमंत्री देखना पड़ा।
8: अमेरिका के अंदर इसराइल का झंडा नहीं लहराने दिया लोगों ने, ये है गाजा, वहां फिलिस्तीन का झंडे लहरा रहे थे। फिलिस्तीन के अंदर पूरी दुनिया ने देखा है कि नरसंहार हुआ है, मासूम बच्चों को मारा गया है, देश का कूटनीति और देश की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी हमारे सरकार ने।
9: द प्रॉब्लम इज दैट कांग्रेस ऑलवेज पुट्स वोट बैंक ऑन विदेश नीति एंड देयरफॉर दे इन द नेम ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स नेवर डेवलप्ड एनी रिलेशंस विद इजराइल एंड दे आर द सेम वंस हु कीप स्पीकिंग अप एंड इवन यूलोजाइजिंग प्लेटफॉर्मिंग एंड सिंपथाइजिंग विद द कॉज ऑफ हमास बट नॉट वंस हैव दे स्पोकन कैटेगोरिकली ऑन द टेरर अटैक्स that have been done on Israel. Sonia Gandhi speaks up for the Muslims in Gaza. They tweet about Rafah, but they are silent on Hindus in Dhaka. And this shows that for them, even Videsh Niti is calculated on the table, on the calculus of vote bank.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bipoles, with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report.
10: Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIA-DMK government. Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TVK in upcoming bipoles and local body polls.
11: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிவிட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
10: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
12: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
10: As attention shifts to the upcoming bipoles, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress, VCK and IUML are now deeply embedded inside the ruling TVK government with cabinet portfolios, while the left continues its outside support to the minority government. The bipoles could offer the first glimpse of Tamil Nadu's changing electoral landscape. Bureau Report, India Today.
7: Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call off the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
13: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
14: छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
13: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
14: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने
0: पुलिस हाउएवर से द हेयर पैच अलोन मे नॉट हैव बीन द मोटिव फॉर द मर्डर. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
15: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिया
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट अ सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
16: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
17: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
18: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से
17: जी मैंने ही उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है
18: एसआईटी की मांग की आपने इस पर
17: सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज आल्सो अपॉइंटेड 2611 प्रोसिक्यूटर्स उज्ज्वल निकम as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains. Will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: The US envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and PM Modi and given a big update about the India-US trade deal. At the same time, US Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-US ties? We are getting you this special report.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All eight arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं ये विश्व हिंदू परिषद ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव विश्व हिंदू परिषद VHP पत्नी पूनम देवी पुत्र रवि यादव ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुईं रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया उसके बाद मनीष यादव जो उनका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: उनकी बहन है वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है
3: आप बहन है उनकी उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में आपका क्या पक्ष है आप क्या कहना चाहेंगे
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है नेहा मेरी कुछ नहीं है उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है उनका मैटर चाचा चाची का है वो अलग जाने
3: हाँ नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया तमाम चीजें उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं
2: वो सब फंसाया जा रहा है उनका केस चल रहा है उसी में वो भी आपके बीच में बोल रही है कि फंस रहे ये लोग
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev who was in charge of the temple CCTV and counting room Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है उसकी डकैती आपके सामने है और हम नहीं कह रहे शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई जो महिपाल सिंह था जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है दान का पैसा चुराया जा रहा है एक्शन नहीं लिया गया महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए
0: ऑन द अदर हैंड योगी गवर्नमेंट इज वाउ टू इंश्योर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड
6: निष्पक्ष जांच होगी FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो ये सरकार इसने निर्देश दिया
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bi-polls with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report.
8: Tamil Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIADMK government. Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TVK in upcoming bi-polls and local body polls.
9: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிவிட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
8: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
9: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
8: As attention shifts to the upcoming bi-polls, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress, VCK and IUML are now deeply embedded inside the ruling TVK government with cabinet portfolios, while the left continues its outside support to the minority government. The bi-polls could offer the first glimpse of Tamil Nadu's changing electoral landscape. Bureau Report, India Today.
7: Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call off the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
10: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
11: कितना छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
10: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
11: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का बड़ा पसंद था गलत कर देते थे ना.
0: Police, however, say that the hair patch alone may not have been the motive for the murder. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
12: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिया
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट अ सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
13: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहां से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
14: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
15: आपने ये कहा मुख्यमंत्री
14: जी मैंने ये उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है
15: एसआईटी की मांग की आपने इस पर
14: सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: The Maharashtra government has also appointed 2611 prosecutors Ujjwal Nikam as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains, will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: The US envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and PM Modi and given a big update about the India-US trade deal. At the same time, US Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-US ties? We are getting you this special report.

0: As the probe in the Ram Mandir donation theft intensifies, more skeletons are tumbling out of the closet. All 8 arrested accused have been remanded to judicial custody until Monday, with the police claiming to have recovered nearly 80 lakh rupees from them. The investigation has raised serious questions on security lapses. The SIT has also branded these lapses as willful negligence and has also pointed towards the possible involvement of insiders. Amid the ongoing controversy, the Ram Mandir Trust has finally confirmed that its General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra have resigned from their positions. Champat Rai has not been named as an accused in the FIR. However, his administrative role at the Temple Trust has raised questions about whether a mere resignation based on ethical grounds is enough.
1: ये पहले आप ये हॉस्टल देखिए और इस हॉस्टल में स्टूडेंट्स रहते हैं. ये विश्व हिंदू परिषद, ये नेम प्लेट लगी है श्री राम शंकर यादव, विश्व हिंदू परिषद VHP, पत्नी पूनम देवी, पुत्र रवि यादव. ये हॉस्टल है और जब इसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ शुरू हुई, रामशंकर यादव को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मनीष यादव जो उसका भतीजा है उसको भी गिरफ्तार किया गया. कुल मिलाकर 8 लोगों को गिरफ्तार करके अयोध्या पुलिस ने जेल भेजा है.
0: Another key accused, Anukalp Mishra, who has been arrested in the case, had bought a house worth 40 lakhs 2 years ago.
2: उनकी बहन है, वो मेरे भाई को फंसाया जा रहा है.
3: आप बहन है उनकी, उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है. ये प्रशासन द्वारा कहा गया है कि वो इन्वॉल्व थे इस पूरी चढ़ावा चोरी में. आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: मेरे भाई को फंसाया जा रहा है. नेहा मेरी कुछ नहीं है, उनसे शादी हुई थी चाचा की 10 साल से उनका केस चल रहा है. उनका मैटर चाचा चाची का है, वो अलग जाने.
3: हाँ, नेहा मिश्रा की आपने जो बात आप बता रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए कई कि किस तरीके से पहले कुछ नहीं था और अब इन्होंने घर बना लिया, तमाम चीजें, उन आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि वो आपके परिवार का होके कि इस तरीके के आरोप क्यों लगा रहे हैं?
2: वो सब फंसाया जा रहा है, उनका केस चल रहा है, उसी में वो भी आपके बीच में बोल रही है कि फंस रहे ये लोग.
0: The lens is also on the role of a senior UP police wireless officer Arjun Dev, who was in charge of the temple CCTV and counting room. Arjun Dev is considered very close to the Mandir Trust office bearers, including Champat Rai. The cop in question is so influential that he evaded transfers several times. As the investigation gathers pace, the political battle has become fiercer. The opposition has demanded the dissolution of the Ram Mandir Trust and has sought an SC monitored probe. Meanwhile, the party has also demanded the arrest of all office bearers.
4: Ek mandir pure desh mein जो सीधा आरएसएस और पीएमओ देखता है, उसकी डकैती आपके सामने है. और हम नहीं कह रहे, शुरुआत तो मंदिर के भीतर से हुई. जो महिपाल सिंह था, जिसने सबसे पहले चंपत राय जी को बताया कि साहब ये काउंटिंग से ये पैसा गायब हो रहा है, दान का पैसा चुराया जा रहा है, एक्शन नहीं लिया गया, महिपाल सिंह को बाहर कर दिया गया. तो आप सोचिए कि ये पैसा कहां कहां जाता होगा, इसके तार किस किस शहर में जुड़े होंगे.
5: एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने इसको इसकी बुराई नहीं की है, चंदा चोरी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला. तो पूरा हिंदू समाज की एक ही मांग है कि जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए.
0: On the other hand, Yogi government has vowed to ensure stringent action against the accused.
6: निष्पक्ष जांच होगी, FIR दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया.
0: This is now no longer a case of Mandir donations theft, but a test of the government to restore the faith of Ram Bhakts and ensure transparency of operations of the Mandir Trust. With Sima Chawla in Ayodhya, Bureau Report, India Today.
7: Sonia Gandhi has launched a big attack on Modi government's foreign policy vis-a-vis the Israel conflict in a scathing op-ed piece for a national daily. The Congress MP questioned the government's silence on Gaza and claimed that India is prioritizing closer ties with Israel over its historical position on Palestinian rights. Sonia Gandhi further sought to paint the government as pro-Israel and argued that India was slipping into Tel Aviv's orbit. Meanwhile, BJP has rebutted Sonia Gandhi and accused the former Congress chief of playing vote bank politics over Gaza. The Israel conflict has remained a polarizing issue in Indian politics, and the Congress has time and again raised its voice for the Palestinian cause.
4: ये सवाल आज से नहीं उठाए जा रहे हैं, सोनिया जी ने पहले भी उठाए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार सवाल उठाए, हमला बोला प्रधानमंत्री पर कि आप कैसे एक गैर कानूनी युद्ध में जाकर इसराइल के साथ खड़े हो गए। यूएन रिपोर्ट की भी आवश्यकता नहीं थी, सबने सब कुछ देखा है, पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है इसराइल के खिलाफ लामबंद होकर, इस गैर कानूनी जंग के खिलाफ। लेकिन भारत, भारत का प्रधानमंत्री किसी दबाव में है, भारत का प्रधानमंत्री कहीं ब्लैकमेल हो रहा है कि इस तरह से खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है, इस तरह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती, गजा मेल हजारों हजारों बच्चे मारे गए, उसके बाद प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अफसोस कि भारत को इस तरह का प्रधानमंत्री देखना पड़ा।
8: अमेरिका के अंदर इसराइल का झंडा नहीं लहराने दिया लोगों ने, यह है गाजा, वहां फिलिस्तीन के झंडे लहरा रहे थे। फिलिस्तीन के अंदर पूरी दुनिया ने देखा है कि नरसंहार हुआ है, मासूम बच्चों को मारा गया है, देश का कूटनीति और देश की विदेश नीति की धज्जियां उड़ा दी हमारे सरकार ने।
9: द प्रॉब्लम इज दैट कांग्रेस ऑलवेज पुट्स वोट बैंक ऑन विदेश नीति एंड देयरफॉर दे इन द नेम ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स नेवर डेवलप्ड एनी रिलेशंस विद इजराइल एंड दे आर द सेम वंस हु कीप स्पीकिंग अप एंड इवन यूलोजाइजिंग प्लेटफॉर्मिंग एंड सिंपथाइजिंग विद द कॉज ऑफ हमास बट नॉट वंस हैव दे स्पोकन कैटेगोरिकली ऑन द टेरर अटैक्स that have been done on Israel. Sonia Gandhi speaks up for the Muslims in Gaza. They tweet about Rafah, but they are silent on Hindus in Dhaka. And this shows that for them, even Videsh Niti is calculated on the table, on the calculus of vote bank.
7: Tamil Nadu is witnessing a sharp political churn ahead of the bipoles, with alliance dynamics undergoing significant change. Vaiko-led MDMK has formally walked out of its long-standing tie-up with the DMK, accusing the party of attempts to undermine its identity. Vaiko has further indicated support for Chief Minister Vijay-led TVK, adding momentum to speculation over shifting political alignments. Take a look at this report. Nadu's political landscape is witnessing a major churn, with alliance equations changing rapidly and new political signals emerging. Vaiko-led MDMK has dropped a bombshell, officially exiting nearly a decade-long alliance with the DMK. The decision came at the party's General Council meeting, where it passed 23 resolutions, accusing the DMK of attempting to weaken the party's independent identity and alleging a hidden plan to facilitate an AIADMK government. Vaiko has also thrown his weight behind Vijay, saying MDMK will support TVK in upcoming bipoles and local body polls.
10: நாங்கள் திமுக கழகத்தின் தலைமையிலான கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறி விட்டோம். நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை முதலமைச்சராக இருக்கிற மாண்புமிகு ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையிலான ஆட்சிக்கு ஆதரவாக நாங்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தை இடைத்தேர்தல்களில் ஆதரிப்போம்.
7: But the real clues lie in recent high-profile meetings. The development comes amid growing speculation over MDMK's proximity to the ruling TVK. Recent meetings between Vaiko and Chief Minister Vijay have also intensified buzz over a political realignment.
11: Within a short time, they have succeeded in eradicating commission and corruption. Hats off to Mr. Vijay.
7: As attention shifts to the upcoming bipoles, sources indicate that DMK Chief M.K. Stalin may contest from Trichy East, the seat vacated after Chief Minister Vijay retained Perambur in accordance with election law. With the MDMK's departure, the ruling TVK consolidates its hold. The Congress, VCK and IUML are now deeply embedded inside the ruling TVK government with cabinet portfolios, while the left continues its outside support to the minority government. The bipoles could offer the first glimpse of Tamil Nadu's changing electoral landscape. Bureau Report, India Today. Another revelation has come to light in the Lohagarh murder case. Police are probing whether Ketan's hair patch was the trigger for the murder. They are also verifying whether his appearance led to a fallout between the couple. Meanwhile, investigators claim that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. They further claim that Sia did not call up the engagement to avoid social stigma. We're getting you all the latest developments in this report.
0: A bald spot, a wig and a cricket connection. With every passing day, the probe into the Pune murder case is intensifying, bringing to light chilling and at times bizarre details. India Today has now learned that Ketan's hair patch could have been one of the triggers behind the murder. Cops are verifying whether Ketan's appearance led to a fallout between the couple. Investigators say Ketan's family had informed Sia about the wig before the engagement. Ketan's father maintains that the hair patch was never concealed.
12: को वीक पहनता था वो एक बड़ा कारण है वो इसमें कितना तथ्य है इन बातों में
13: सर छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था उनको सबको बताया गया
12: तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे
13: क्या कारण है किसी बच्चे को मारने
0: पुलिस हाउएवर से द हेयर पैच अलोन मे नॉट हैव बीन द मोटिव फॉर द मर्डर. The probe has also revealed that investigators believe that Sia did not want to marry Ketan and wanted another 2 to 3 years before marrying Chetan. Police claim Ketan was murdered to delay the marriage. Investigators further claim that Sia did not call off the engagement to avoid a social stigma. The two accused had also taken a trip to Udaipur before Sia's engagement to Ketan. Amid all this, investigators have also unearthed a cricket connection that appears to explain how Sia and her lover Chetan first came to know each other. The probe has revealed that Chetan and Sia's brother Sahil played cricket together and Sia often accompanied Sahil to cricket matches. Police say this is where Sia and Chetan first met. The two allegedly reconnected at the friend's Diwali party in 2025, after which they remained in frequent contact. Police records show that they exchanged 2004 calls between January and June 2026 with a total call duration of nearly 238 hours. Investigators are now mapping the timeline of the relationship. Meanwhile, Renu and her husband Narendra Mittal have also been questioned by the police in connection with the murder case. The Mittals had helped arrange Sia and Ketan's marriage. Police have made it clear that everyone connected to the case is under the scanner.
14: ये इन्वेस्टिगेशन में हर किसी का इन्वेस्टिगेशन होगा जो हम बाय प्रोसीजर और जो प्रोसीजर में ठीक है उस हिसाब से हम स्टेटमेंट लेंगे अभी तक जो एक्यूज्ड है उनके मोबाइल हमने जब्त कर लिए वो एफएसएल को भेज दिया
0: एट द हार्ट ऑफ दिस केस आर टू फादर्स वन हु हैज लॉस्ट अ सन एंड अनदर हु सेज हिज ओन डॉटर शुड फेस द हार्शेस्ट पनिशमेंट इफ शी इज फाउंड गिल्टी
15: इसमें जो भी आरोपी हो जो भी जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी खत्म कर दिया जाए
0: केतन्स फादर मीनवाइल मेट चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस एंड डिमांडेड जस्टिस
16: मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए
17: आपने ये कहा मुख्यमंत्री से
16: जी मैंने ये उनसे विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए जी उन्होंने मुझे कहा है आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर वो जो भी है
17: एसआईटी की मांग की आपने इस पर
16: सर ऑलरेडी एसआईटी हो चुकी है बोल के मुझे ऐसा पता चला है
0: The Maharashtra government has also appointed 2611 prosecutors Ujjwal Nikam as the special public prosecutor in the case. The investigation is intensifying, but the bigger question remains. Will the police be able to build a watertight case? And will Sia and Chetan face the full force of the law? And will Ketan's family finally get justice? Bureau Report, India Today.
7: The US envoy to India has hailed the bonhomie between Trump and PM Modi and given a big update about the India-US trade deal. At the same time, US Secretary of State Marco Rubio has revealed that President Trump will visit India next year. What does all of this mean for India-US ties? We are getting you this special report.